आग साच रते अहे निस बैराग क्यों जुग में अमृत साची बाणी पूरे पाग हर नाम सुमाणी सिद्ध साधक तरसे सब लोए पूरे पाग प्राप्त होए सबके साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए सच साचा सच आप दृढ़ाए नानक आपे वेखे आपे सच लाए तनासरी महला तीजा नावे की कीमत मित कही न जाए से जन तन जिन एक नाम लिवलाए गुरमत साची साचा विचार आपे बगसे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ हम मूर्ख मूर्ख मन माहे होमे विच सवकार कमाहे गुर प्रसादी होमे जाए आपे बगसे लए मिलाए बिखिया का धन बहुत अभमान अहंकार डूबे ना पावे मान आप छोड़ सदा सुख होई गुरमत साला ही सच सोई आपे साजे करता सोए तिस बिन दूजा अवर न कोए जिस सच

जिन जल सुखेत बढ़ायो कमल हेत बिन सुखे पवरा उन मार्ग निकस न पायो। आप मान एक स्यो मोकीना मरे न जावे सदगी संगे सदगुर सबदी चीना रहाओ। काम हित कुंतर लै फांकेओ ओ पार वस पयो बिचारा नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उस ही हेत बिदारा। दे कुटंब लोभ मोयो प्राणी माया कौल बटाना अतरच्यो कर लीनो अपना उन छोड़ सरा पर जाना। बिन गोबिंद अवर संग नेहा ओ जानो सदा दुखेला कहो नानक गुर एह बुझायो प्री प्रभु सदकेला। तनासरी महला पंजवा कर कृपा दियो मोहे नामा बंधन ते छुटकाए मन ते बिसरियो सगलो तंदा गुर की चरणी लाए। साध संग चिंत बैरानी छाडी अंग बुद्ध मोह मन बासन दे कर गढ़ा गाडी रगाओ। ना को मेरा दुश्मन रहया नाम किसके बैराई ब्रह्म पसार पसायो पीतर ता गुर ते सोजी पाई। सब को मीत हम आपन कीना हम सबना के साजन दूर परायो मन का बिरगा ता मेल कियो मेरे राजन। बिन सो ठीठा अमृत बूठा शब्द लगो गुर मीठा जल थल मैयल सर्ब निवासी नानक रमैया डीठा। तनासरी महला पंजवा जब ते दर्शन पेटे साधु पले दिनस ओए आए मां आनंद सदा कर कीर्तन पुरख विधाता पाए। अब होए राम जसो मन गायो पयो परगास सदा सुख मन में सदगुर पूरा पायो रहाओ। गुण निधान दिल पीतर वसया ता दुख परम पौ पागा पई प्राप्त वस्त अगोचर राम नाम रंग लागा। चिंत अचिंता सोच असोचा सोग लोभ मोथा का होमे रोग मिटे कृपा ते जमते पए बिबाका। गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पाणी कहो नानक जिन जमते काढे तिस गुर कै कुरबाणी। तनासरी महला पंजवा जिसका तान मन तान सब तिसका सोई सुड़ सुजानी तिन ही सुनिया दो सुख मेरा तौ बिदनी की खटानी। जी की एक ही पैमानी आवर जदन कर रहे बहुत तेरे तेन तिल नहीं कीमत जानी रगाओ अमृत।

अब रह गीत हर चंदौरी बन हर पात्रे एह तुहारो बीत रहाओ। चंदन लेप होद देखो सो गर्द पसम संगीत अमृत संग नाहे रुचि आवत विखेठ गौरी प्रीत। उत्तम संत पले संजोगी ए जुग में पवित पुनीत जात अकारथ जन्म पदार्थ ताज बद रहे जीत। जन्म जन्म के किल विघ दुख फागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत। साध संग इन दुते निकसियो नानक एक परीत। तनासरी महला पंजवा पानी पखा पीसो संत आगे गुण गोविंद जस गाई। सास सास मन नाम समारे क्यों विश्राम निध पाई।

कांड हो अनकबीरी समझाव हो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरध रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुमगी सजन सुहेले रखो रखन हार दयाला नानक करके गोले तनासरी महला पंजवा पूजा वर्त तिलक इस नाना

आओ आद अंत दयाल पूर्ण तिस बिना नहीं कोए जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोए वेद सिमरत कथय सासत भगत करे विचार मुक्त पाईगे साध संगत बिरस जाए अंधार चरण कमल आधार जन का रस पूंजी एक तान मान दीवान साचा नानक की प्रवटेक तनाश्री महला पंजवा फिरत फिरत पेटे जन साधु पूरे गुर समझाया आन सगल विद काम न आवे हर हर नाम ते आया ताते मोय तारी ओढ़ गोपाल शरण परयो पूर्ण परमेश्वर बिनसे सगल जंजाल रहाव सुर्ग मृत पयाल भूमंडल सगल व्यापे माए जी उदाहरण सब कुल तारन हर हर नाम ते आए नानक नाम निरंजन गाइए पाइगे सर्ब निधन।

गए प्रभ अपने सुख पायो दिन रात तनासरी महला पंजवा पर हरना लोभ चूड़ निंद ए भी करत गुदारी मृत सिन्हा आस मिथ्या मीठी ए टेक मने साधारी सागत की आवरदा जाए बिरतारी जैसे कागद के पार मूसा टूक गवाव काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी बूढ़ अंध नान प्रकाड़ साध जना संगारी तनासरी महला पंजवा सेमर सेमर स्वामी प्रव्यपना शीतल तन मन शाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म मोरे जाती रसना राम रसायन माती रंग रंगी

चरण कवन जाका मन रागयो अमे सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा। आस शीज गया सब तन ते प्रीतम स्यों मन लागा राव जय जय पेखो तय नारायण सगल कटा मैं तागा। नाम उलक पीवत जन नानक

जाम रहाव सिमर सिमर स्वामी प्रव्यपना निटन आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का ताम चरण कमल हर जन की थाती कोर सुख विश्राम गोविंद दमोदर सिमरो दिन रैन नानक सत कुरबान तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वस संतन का संग पावो सो अगर मेहमाना व्यापे आड़ पैर गुण गाओ स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मध्यान्त प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर

दीन दयाल सदा दुख भंजन ताश मना लगाना जन नानक कोटन मैं किन्हूं गुरमुख होए पछाना तनासरी महला नावा तेजोगी को जुगतना जानो लोभ मोह माया ममता फोन जे कड़माए पछानो हराव पर निंदा उस्त तन जाके कंचन लो समानो हरग सोगते रहे अतीता जोगी ताए बखानो चंचल मान दहत को तावत अचल जाए ठहरानो ओ नानक हे बिद को जो नर मुक्त ताए तुम मानो तनासरी महला नामा आप मैं कौन उपाव करो जेवद मन को संसा चूके।

मन पतियाए, साचे निर्मल मैल ना लागे, गुर कै शब्द परम पौ पागे, तूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचे साज स्वरूप, तनासरी महला पहला, सहज मिले मिले या परवान, नात स्मरण न आवन जान, ठाकुर मैं दास दास मैं सोए, जय देखा ते अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाइये, बिन गुर फेटे मर आइये।

प्रेम भगत प्रामन पति आया, पड़ पड़ फूले चोटा खावे, बहुत सियाण आवे जागे, नाम जपे पौ भोजन खाए, गुरमुख सेव करे समाए, पूज से

एक नाम निरंजनो जियो, तू दाता दातार सर्व दुख पंजनो जियो, दुख हरत करता सुखे स्वामी शरण साधु आया, संसार सागर महा बिखड़ा पल एक मह तराया, पूर है या सर्वथाई गुर ज्ञान नेत्री अंजनो, बिनवंत नान सदा सिमरी सर्व दुख पय पंजनो, आप लिगे लड़ लाए कृपा तारिया जियो, मोए निर्गुण नीज अनाथ प्रभ अगम अपारिया जियो, दयाल सदा कृपाल स्वामी नीचता पणहारिया, जी जनसा वस तेरे तगर तेरी सारिया, आप करता आप भुगता आप सगल बीचारिया, बिनवंत नान गुण गाए जीवा हर जप जपो बनवारिया, तेरा दर्श अपार

जो होई इंद्र लोक शिव लोक के जैबो उसे तब कर बाहर आयबो क्या मांगो कुछ सिर नाही राम नाम रख मन माही रखाओ सोभा राज विभय बढ़ियाई अंत न काहू संग सहाई पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया इनते कहो कम ने सुख पाया कहे तो कबीर अवर नहीं कामा अमरे मन थन राम को नामा राम सिमर राम सिमर राम सिमर पाई राम नाम सिमरन बेन बूढ़ते अधकाई रहाओ बंता सुधे गृह संपद सुखदाई इनमें कुछ नागे तेरो काल अवध आई अजामल गजगन का

नीव खुदाई ऊपर मंडप छाए मारकंडे ते को अदकाई जिन त्रेण थर मूंड बलाए हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्व करत हो बिरस जाए झूठी देही हरहाओ मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से पाई पार है जोजन छद्र चले था देही गिरज ना खाई सर्व सोयन की लंका होती रावण से अदकाई कहां पयो दर बंदे हाथी खिर में पई पराई दुर्वासा से करत ठगोरी यादव ए फल पाए कृपा करी जने अपने ऊपर नाम जो हर गुण गाए तस बैरागन मोए बस कीनी पंचो का मिट नावो छत्र दोए परे अमृत सार बिख को मार कढावो पाचे भौर न आवन पावो अमृत बाणी कढ़ते उचरो आत्म को समझावो रहाओ बजर कुठार मोए है शीना तार मिनत लग पावो संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पाओ ये संसार ते तबगी छूटो जो माया नह लपटावो माया नाम गर्भ जोन का ते ता दर्शन पाओ इत कर पड़त करे जो जान तेन पौ सगल चुकाई है तहत नाम दो बार क्या परम हो ए संजम घर पाइये मार वाड़ जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला जो कुरंक निसनाद बालहा जो मेरे मन रामैया तेरा नाम रूढ़ो रूप रूढ़ो अतरंग रूढ़ो मेरो रामैया रहाओ जो तरणी को इंद्र बालहा कुसुम्बा जैसे पवरला जो कोकल को अंब बालहा त्यो मेरे मन रामैया चक्री को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसला जो तरणी को कंत बालहा त्यो मेरे मन रामैया पार्क को जैसे खीर बालहा चात्रक मो जैसे जल थरा मछली को जैसे नीर बालहा त्यो मेरे मन रामैया साधक सिद्ध सगर मुन चाह है बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरु नाम बालह त्यो नामे मन बीठला पैल पुरगे पुंडरक वना ताचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानऊ हर हर नचंती नचना पैल पुरसा बिरा

नाम फूल माला पार अठारे सगल जूठारे तेरो किया तुझे क्या अर्प नाम तेरा तुही क्यबर ठोलारे दस अठ अड़सठ चारे खानी एह वर्तन गए सगल संसारे कहे रविदास नाम तेरु आरती सत नाम है हर भोग तुहारे पनास।

जंगम जाति कायो तूप दीप नहीं बेद कायो पूजो पाती काया बो खंड खोजते नवनद पाई ना कछ आए बो ना कछ

जियो, हमरा खुशी करे नित जियो, पनिया छत नीका, अनाज मंगो सत सीका, गऊ पैस मंगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी, करकी गीघन चंगी, जन तन्ना ले वै मंगी। जैत सरी महला चौथा, तार पहला चौपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद मेरे हीरे रतन नाम घर बसया, गुर हाथ धरियो मेरे माथा, जन्म जन्म के किलबक दुख उतरे, गुर नाम दी ओर न लाथा, मेरे मन भाज राम नाम सब अर्था, गुर पूरे हर नाम बिरड़ाया, बिरनावे जीवन बिरथा, अरहाओ बिन गुर मूड़ पए है मनमुख, ते मोह माया नित फाथा, तिन साधु चरण न सेवे तबहू, तिन सब जन्म अकाथा, जिन साधु चरण

आओ सखी हर मेल मिलाह, सुनकर कथा नाम ले लाह। हर हर कृपा तार गुर मिल हो, गुर मिले हर ओ महाराम। कर कीर्त जस अगम अथाह, खिन खिन राम नाम गावाह। मोको तार कृपा मिली गे गुरदाते, हर नानक भगत ओ महाराम। जैत सरी महला चौथा, रस रस राम रसाल सलाह। मन राम ना पीना ले लाह, किन किन भगत करे दिन राती। गुरमत भगत ओ महाराम, हर हर गुण गोविंद जपाहा। मन तन जीत शब्द ले लाहा, गुरमत पंच दूत बस आवे। मन तन हर ओ महाराम, नाम रतन हर नाम जपाहा। हर गुण गाय सदा ले लाहा, दीन दयाल कृपा कर माधो। हर हर नाम ओ महाराम, जप जगदीश जपो मन माहा। हर हर जगन्नाथ जग लाहा, तन तन वड्डे ठाकुर प्रा मेरे। जप नानक भगत ओ महाराम। जैत सरी महला चौथा, आपे जोगी जुत जुगा।

दूख आराधन दूख आराधन बिसरे ना काहू बेरा, नाम जगत कोड़ सूर उजारा बिरसे परम अंधेरा, थान थनंतर सब नहीं जाई जो दिसे सो तेरा, संत संग पावे जो नानक जिस बौर न होई है फेरा। जैत सरी महला पंजवा कार चौथा दो पदे एक ओंकार, सदगुर प्रसाद आव मैं सुख पायो गुर आग, तजी स्यान बचिंत सारी अंग छोड़े हो त्याग, रहाओ जो देखो तो सगल मोय मोहियो तो शरण परयो गुर भाग, कर कृपा टहल हर लायो तो जब छोड़ी मोहरी लाग, तेरे सागर पावक को जो संत फेटे वड भाग, जन नानक सर्व सो पाए मोरो हर चरणी चित लाग। जैत सरी महला पंजवा मन में सतगुर ध्यान धरा, त्रिड़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभु जीव मया करा, रहाओ काल जल अरमा जंजाला छुड़के जमे डरा, आयो दुख हरण शरण करना पत कयो चरण आसरा, नाव रूप पयो सत संग अनध पार परा, आप्यो पियो गातियो परमा को नानक अजर जरा। जैत सरी महला पंजवा जा को पय गोविंद सहाई, दुख सहज आनंद सगल स्यों वा को व्याद न काई, रहाओ दिसे सब संग रह अलेपा न व्यापे उन्माई, एक रंग तत के बेते सदगुर ते बुध पाई, दया मया कृपा ठाकुर की से ही संत सुपाई, तिनके संग नानक निस्तरीय जिन रस रस हर गुण गाई। जैत सरी महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण तन रूप, अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे मैं दीप, रखाओ सबल दर्शन तुमरा प्राप्रीतम चरण कमल आनूप,

सार प्रभिसरत सो कदे नाहे जासे जन्महार श्लोक मन इच्छा दान करण सर्वत्र आसा पूर्ण है खंडन कल कलेस प्रसिमर नानक ने दूरण हावरंग माने जिस संग तय सो लाइगे नेहो तो सो बिंद ना विसरो नानक जिन सुंदर किया देहो पौड़ी जियो प्राण तन तन दिया तीने रस भोग गृह मंदिर रथ अस दिए रज पले संयोग सुदबंता सजन सेवक दिए प्रदेवन जोग हर सिमरत मन तन हरिया ले जाए विजोग साध संघ हर गुण रमो बिरसे सब सोग तलोक कुटंब जतन करण माया अनेक उद्यम है हर भगत पादहीन नानक प्रा विसरत ते प्रेत है सुटड़िया सा प्रीत जो लाई बेअन स्यो नानक सच्ची रीत ताई से तीरत्या पौड़ी जिस विसरत तन पसम होए कहते सा प्रेत खिन घिर में बसन ना देवही जिनस्य सोई हेत कर अनर्थ दर्ब संचया सो कार्ज केत जैसा बीजे सो लुणे कर्म यो खेत अकिरत कणा हर विस्तरया जोनी परमहेत श्लोक कोट दान स्नान अनक शोधन पवित्रत उचरंत नानक हर हर रसना सर्व पाप विमुचते ईदन कीतो मूकणा ओरी दतीम पाहे मन वसंदरो सच सहो नानक हब्बे डुखड़े उलाहे पौड़ी कोड़ अगा सब नास होए सिमर तर नाओ मन चिंदे फल पाईए हर के गुण गाओ जन्म मरण पै कटिए निचल साथाओ पूर्व होवे लिखिया हर चरण समाओ कर कृपा प्रभ राख लेहो नानक बल जाओ श्लोक गृह रचना अपारंग मन बिलास स्वादंग रस कंदाच ने स्मरंत नानक ते जंत दिष्टा कृम मुझ अडंबर हब के हो मंज मोहब्बत नेह तो साई जय विसर नानक सो तन खेह पौड़ी सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे गृह सोन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे मन इच्छे सुख मानद इस नाये विसूरे तो प्रचेतन आवई विष्टा के कीरे बिन हर नाम ना सांत होए किद बिद मन तीरे श्लोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दह दिस त्यागंत कपट रूप माया नानक आनंद रूप साध संग में मन साई मुख उचरा वत्ता हब्बे लो नानक हब अडम

ना इड़तना रूप हीन किज साक ना सिन्ना राजा सगली सिटका हर नाम मन पिन्ना इसकी तूड़ मन उधरे प्रभ होए सो प्रसन्ना श्लोक अनक लीला राज रस रूपं छतर चमर तख्त आसनं रचत मूड अज्ञान अंधे नानक सुपन मनोरथ माया सुपने हावरंग माणिया मिठा लगड़ा मोहो नानक नाम विहूणिया सुंदर माया त्रोहो पौड़ी सुपने से तीचित मूर्ख लाया बिस्तरे राजरस कोक जागत पखलाया आर जा गई वेहाय तंदे ताया पूर्ण पय ना काम मोया माया क्या वे चारा जंत जा आप पुराया श्लोक बसंत स्वर्ग लोक है जिद ते प्रथमी नव खंडन है विसरंत हर गोपाल है नांग ते प्राणी उद्यान परमण कौतक कोड़ तमास चेतन आवस नाओ नानक कोड़ी नरक बराबर उजड़ सोई थाओ पौड़ी महापयान उद्यान नगर कर मान्या चूड़ समगरी पेख सद कर जानिया।

नारको रंग के बेदया सन्मुख उड़तावे पवर लोभी कुसुम्बास का मिल आप बंधावे तू संत जना कर प्रीत है देख दर्श अघावे श्लोक चितवंत चरण कमलंग सास सास आराधन है नय विश्राम।

अवर न काहू तानी, ऐसो अमर मिलो भगतन को राज रहे रंग ज्ञानी। रोग सोग दुख जरा अमर हर जने नहीं निकटानी, निरप हो रहे ले एक नानक हर मन मानी। टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी, ताको तोखा कहां व्यापे जाको ओढ़ तुहारी। अरहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी। नवखंडन को राज कमावे अंत चले बोहारी, गुण निधान गुण तिन ही गाए जा को कृपा तारी। तो सुहिया तन उस जन्मा नानत बलिहारी, टोडी महला पंजवा हर दूजा चौपदे एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। तायो रे मान दहदस तायो, माया मगन स्वाद लो मोयो, तिन प्रभ आप पुरायो। रहाओ हर कथा हर जस साध संगत स्यो, एक मोतन यो मन लायो। बिगसो पेख रंग कुसुंभ को पार गए जो हुन जायो, चरण कमल स्यो पाओ न कीनो। नय सत पुरख मनायो, ताकत को थावे बो पाती क्यों तेली बल्द परमायो। नाम दान स्नान न कियो, एक निमख न कीर्त गायो। नाना झूठ लाए मन तोखयो, न बूझो अपनायो। पर उपकार न कबहू किए, नहीं सतगुर सेव ते आयो। पंच दूत रच संगत गोष्ट मतवारो मधमायो, करो बेनती साध संगत हर भगत बछल सुन आयो। नानक पाग परिहर पाछ राख लाज अपनायो, टोडी महला पनवा मानुख बिन बूझे बिरथा आया। अनक साहसी गार बो करता जो मृतक ओढ़ाया। रहाओ ताए ताए कृपन श्रम कीनो, एकत्र करी है माया। दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काजन आया, कर आ परन सवारी सेजा कामन थाट बनाया। तंग न पायो अपने परते, पेख पेख दुख पाया। सारो दिन समझूर ही करता तो मूसले शराया, पीत पयो बेगारी न्याई हर के कामन आया। पयो अनुग्रह जाको प्रभु को तिस हृदय नाम साया, सा संगत कै पाछे परयो जन नानक हरस पाया। टोडी महला पंजवा कृपा निध बसो हृदय हर नीत, तैसी बुद्ध करो परगास लागे प्रसंग प्रीत। रहाओ ता तुम्हारे की पावो तूरा, मस्तक ले ले लावो, मां पद ते होत पुनी।

कर्म जप ए ही राम नाम निर्मल है रीत रहाओ प्राण आधार जीवन तन मोर देखन को दर्शन प्रभ नीत पाठ काट को सत्संग मोर मन अपने को मैं हर सखा कीत संत प्रसाद पाए मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत सिमर सिमर नानक सुख पाया आद जुगाद भगतन के मीत टोडी महला पंजवां प्रभ जी मिल मेरे प्राण बिसर नहीं निमख ही रहते अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ खो वो परम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सुड़ सुजान कोट राज नाम तन मेरे अमृत इट तारो प्रमान आड़ परसना गुण गावे जद पूर अगावे समरथ कान तेरी शरण जीन के दाते

जप मन राम नाम निस्तार, कोट कोटंतर के पाप सब खोवे। हर भवजिल पार उतारा रघाओ, काया नगर बस्त हर स्वामी। हर निर्भव निर्वैर निरंकारा, हर निगट बस कछ नजर न आवे। हर लादा गुर विचारा, हर आपे सहो सराफ रतन हीरा। हर आप किया पासारा, नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे। तो साहु सचा बणजारा, बैराड़ी महला चौथा। जप मन हर निरंजन निरंकारा, सदा सदा हर त्याये सुखदाता। जाका अंत न पारा वारा, रहाओ अगन कुंट में उर्ध लिव लागा। हर राखे उदर मंजारा, सो ऐसा हर सेव हो मेरे मान। हर अंत शिडामन हारा, जाके हृदय बसया मेरा हर हर। इस जन कौ करो नमस्कारा, हर कृपा ते पाएगे हर जप। नानक नाम अधारा, बैराड़ी महला चौथा। जप माना

ऐसा जित सदा सुख होई रहाओ। जिन रंग कंत न रावया सा पचो रे ताणी, हाथ पछोड़े सिर तुण जब रैन विहानी। पचो तावा ना मिले जब चूकेगी सारी, ता फिर प्यारा रावीए जब आवेगी वारी। कंक लिया सोहागणी मैं ते वधवी एह, से गुण मुझे न आवनी कहे जी दोस्त रेह। जिनी सखी सो रावया तिन पूछोगी जाए, पाए लगो बेनती करो लेओगी पंथ बताए। हुगम पछाणे नानका पौ चंदन लावे, गुण कामण कामण करे तो प्यारे को पावे। जो दिल मिलया सो मिल रहया, मिलया कई रे सोई। जे वो तेरा लोचिए बाती मेल न होई, तात मिले फुन तात को लिव लिवे को तावे। पुर प्रसाद दी जानिए तो आन पौ पावे, पाना वाड़ी हुए कर खर सार न जाने। रसिया हो वे मुस्का तब फूल पछाणे, आप्यो पीवे जो नानका प्रम प्रम सुमावे। सहजे सहजे मिल रहे अमरा पद पावे। तिलंग महला चौथा हर किया कथा कहानिया, गुरमीत सुनाइया बलिहारी गुर अपने गुर को बल जाइया। आए मिल गुरसिख आए मिल।

अनगुरु साबास है हर देश स्नेहा औ वेख वे गुरु विकसया गौर सदगुर देखा गोरसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जेन सुन सिखा गुरमनिया तिना पुख सब जावी हर का मार्ग आखिए तो किदबद जाइए हर घर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए जिन गुरमुख हर आरा दया सेसा वरदाने हो सतगुर को सदवारिया गुर भजन समाने तू ठाकुर तू साहिब तू है मेरा मीरा तुद पावे तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी।

आवे, रसना नाम जपोता मथिए, इन विद अमृत पावो, मन संपट जित ससरनावन, पावन पाती तृप्त करे, पूजा प्राण सेवक जे सेवे, इन विद साहेब रब तरहे, कहंदे कहे कहे कहे जावे, तुम सर अवर ना कोई, भगत हीन नानक जन जंपे, आओ सारा ही सच्चा सोई, सूही मोहल्ला पहला कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद अंतर वसै ना बाहर जाए, अमृत छोड़ कहे बिख खाए, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, हो वो चाकर सचे केरे रहाओ, ज्ञान ध्यान सब कोई रवै, बंधन बंधया सब जग

तीर्थ मल मल नहाय, तेरा सदड़ा सुनीजे पाई, ये को भय अलाए अरहाओ, जैसा बीजे सोलने जो खट्टे सो काए, अगय पुछ न हो गई जे सण निशाने जाए, तैसो जैसा काढ़िए जैसी कार कुमाए, जो दम चित न आवई सो दम बिरथा जाए, यो तन वेची बै करी जे को लहे विकाए, नानक कम न आवई जिद तन नाही सच्चा नाओ। सूही महला पहला कार सतवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जोग ना खिंता जोग ना डंड, जोग ना पसम चढ़ाई है, जोग ना मुंदी मूड मुड़ाए, जोग ना सिंगी वाई है, अंजन महे नरंजन रही है, जोग जुगत एव पाई है, गल्ली जोग ना होई, एक दृष्ट कर समसर जाने, योगी कही है सोई रहाओ, जोग ना बाहर मड़ी मसानी, जोग ना ताड़ी लाई है, जोग ना देद संतर पवे है, जोग ना तीर्थ नाई है, अंजन महे नरंजन रही है, जोग जुग तिव पाई है, सदगुर भेटे ता सहसा टूटे, तावत वर्ज रहाई है, निजर चरे सह तुन लागे, कर ही परचा पाई है, अंजन महे नरंजन रही है, जोग जुग तिव पाई है, नानक जीव त्या मर रही है, ऐसा जोग कमाई है, वाजे बाजों सिंगी वाजे, तौ निरभौ पल पाई है, अंजन महे नरंजन रही है, जोग जुगत तौ पाई।

तोर लिख पाया पंच तत्कार तुद सिरट सब साजी कोई सेवा करहो जे किछ कीता होवे एक ना सतगुर मेल तू बुझावे एक मनमुख करे से रोवे हर की वडियाई हो आख ना साका हो मूर्ख मुग्ध नीचाण जन नानक तौहर बख्श लै मेरे स्वामी शरणागत पया अजान राग सूही महला पंजवां कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद बाजी कर जैसे बाजी पाई नाना रूप तेर दिखलाई सांक

जाए, सर्व निरंतर एको जाग, जित जित लाया तित तित को लाग, अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बोल आया तेरा। सूही महला पंजवा, प्राते काल हर नाम उचारी, ईत ऊत की ओर सवारी, सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण होवे मन के काम रहाओ, प्राप अवनासी रैण दिन गाओ, जीवत मरत निचल पावे थाओ, सो साओ सेव जिद तोट न आवे, खात खर्चत सुख अनद विहावे, जग जीवन पुरख साध संग पाया।

तुम ही प्रतपाला जियो पिंड सब तुमरा माला अमृत नाम चले जपनाला नानक जाचे संतर वाला सूही महला पंजवा इस बिन दूजा अवर ना कोई आपे थम्मे सच्चा सोई हर हर नाम मेरा आधार करण कारण

तेरे सेवक कौ पौ किश नाही, जम नहीं आवे नेरे रहाओ। जो तेरे रंग रते स्वामी, इनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्श न मेटे कोई, सतगुर का दिलासा। नाम ध्यान सुख पर पायन, आड़ पैर आराध है। तेरी शरण तेरे परवास है, पांच दुष्टले सद है। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जेन कल राखी मेरी। सूखी महला पंजवा, सगल त्याग गुर सरणी आया। रखो रख नगारे, जित तू लावे तित हम लागे। क्या ए जंत विचारे, मेरे राम जी तू प्रवेंतर जामी। कर कृपा गुरुदेव दयाला, गुण गावा नित स्वामी। अरहाओ आठ पैर प्रभ अपना त्याई है, गुर प्रसाद पोतरी है। आप त्या होइए सब रेणा, जीवत्या इो मरिए। सफल जन्म तिसका जग पीतर, साध संग नव जापे। सगल मनोरथ तिसके पूर्ण, जे दया करे प्रवे आपे। दीन दयाल किरपाल प्रभु स्वामी, तेरी शरण दयाला। कर कृपा अपना नाम दीजे, नानक साधर वाला। राग सूही अष्टपदियां, महला पहला कर पहला। एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

पावई दुख ही महे पचन होमे मैला जल फिर मर जमे वारो वार पय किरत कमावना कोई ना मेटन हार संता संगत मिल रहे ता सच लगे प्यार सच सराही सच मान दर सचे सत्यार गुर पूरे पूरी मत है अहेरस नाम ते आए होमे मेरा।

सुर्ग अवतार माया तंदया सोदत सोदत सोद तत दी चारया ना बिना सुख नाहे सर पर हारया आवे जाए अनेक मर मर जन्म ते बिन बूझे सावाद जोनी परम ते जिनको पय दयाल तिन साधु संग पया अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लया खोजे कोट असंख बहुत अनंत के जिस बुझाए आ

औकने रासुन प्रामेर मैं तेरा परवस दर्शन देख पई ने केवल जन्म मरण दुख नस सगली जोत जाता तू सोई मिलिया पाए सुभाए नानक साजन कौ बल जाइए साच मिले कर आए कर आएड़े साजना ता तन खरी सरसी राम हार मोहेड़ी साच ठाकुर देख रहंसी राम गुण संग रहंसी खरी सरसी जा रवि रंग रत अवगुण मार गुणी कर छाया पूरे पुरख विधाते तस्कर मारवसी पंचायण अदल करे विचारे नानक राम नाम निस्तार गुरमत मिले प्यारे वार पाएड़ा बालड़िए आस्था मनसा पूरी राम तेरे रावेड़ी शब्द रली रब रहया न दूरी राम प्रा दूर न होई कड़कड़ सोई तिसकी नार सबाई आपे रसिया आपे रावे ज्यो ते दी वड्याई अमर अडोल अमोल अपारा गुरपूरे सच पाई है नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाई है फिर उचड़िए मारड़िए त्यो लोवा सिरता जा राम हाँ बिसु पई देख गुणा अनहद शब्द अगा जा राम शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानों

परम गद पाई, पंच मिले सोहाया, गया क्रोध ममता तननाठी, पाखंड परम गवाया, हम में पीर गई सुख पाया, आरोगत पय शरीरा, गुरप्रसादी ब्रह्म पछाता, नानक गुणी गहीरा, मनमुख विछड़ी दूर महल ना पाए, बल गई बलराम जियो, अंतर ममता कूर, कूड़ विहाजे कूड़ लई बलराम जियो, कूड़ कपट कमावे महा दुख पावे, वेण सतगुर मगना पाया, उजड़ पंथ प्रमे गावारी, खिन खिन तक्के खाया, आपे दया करे प्रवदाता, सदगुर पुरख मिलाए, जन्म जन्म के बिछड़े जन मेले, नानक सहज सुभाए, आया लगन गणाए, हिरदे तन ओ माई।

मन मजी वधाई। जब साजन सुने कर आए, गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए, वर पाया पुरख अगम अगोचर, सद नवतन बाल।

नदर प्रभु सत्संग हार मंगल रस रसन रसाय नारक नाम परगस अंतरतन बीचारे गुरमुख नाम प्यारे हर नाम प्यारे शब्द निस्तारे अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया कर चानन कर मंदर सोहाया तन मन अर्प सिगार बनाए हर प्रसवते पाया जो प्रभु कह सोई पर कीजै नानक अंक समाया हर प्रभु काज रित्याया गुरमुख वियाहने आया वियाहने आया गुरमुख अर पाया सातन कंत प्यारी संत जना मिल मंगल गाए हर जीव आप सवारी सुर नर गण गंधर्व मिले आए अपूर्व जंज बनाई नानक प्रपाया मैं सचा ना कदे मरे ना जाई राग सूखी शंत महला चौथा कार तीजा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद आवो संत जनो गुण गावे गोविंद के रे राम गुरमुख मिल रही है कर वाजे शब्द कन्हेरे राम शब्द कन्हेरे घर प्रतेरे तू करता सब ताई आयन जपी सदा सालाही साज शब्द लिवलाई अन दिन सहज रह गए रंग राता राम नावृद पूजा नानक गुरमुख एक पछाणे अवर न जाने दूजा सब में रव रहया हो प्रभंत्र जमी राम गुर शब्द रवे रव रहया हो प्रमेरा स्वामी राम प्रमेरा स्वामी अंतर जामी काट काट रव्या सोई गुरमत सच पाई है सह समाई है तेस बिन अवर ना कोई सहजे गुण गावां जे प्रभावां आपे लय मिलाए नानक सो प्र

एक सो सदा सद जीवई बलराम जियो तेरी टेक तुझे ते पाई साचे सिरजनहारा जिते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा संत जना मिल मंगल गाया दिन रैन आस तुम्हारी सबल दर्श पेटिया गुरपूरा नानक सद बलिहारी समलिया सच थान मान महत सच पाया।

प्रीतम स्वामिया शुभ दिवस आए गए कंठ लाए मिले अंतर जामिया सत संतोख वजे वजे अनहदा चुनकारे सुन पए बिनासे सगल नानक प्रापुरख करणे हारे उपजा तत ज्ञान सहुरे पेइए एक हरबल राम जियो ब्रह्मे ब्रह्म मिलया कोई न सके पिन करबल राम जियो बिस्म पेख बिस्म सुनिए बिस्मादन नहीं आया जल थल महियल पूर्ण स्वामी काट कड़ रहा सुमाया जिसते उपजा सुमाए सुमाया कीमत कहण ना जाए जिसके चलत ना जागी लखने नानक तिसे ते आए राग सूगी शंत महला पंजवा कर दूजा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद गोविंद गुण गावन लागे हर रंग अनदिन जागे हर रंग जागे पाप भागे मिले संत प्यारिया और चरण लागे परम भागे काज सगल सवारिया सुन श्रवण बाणी सहज जानी हर नाम जावड भागे बिनवंत नानक शरण स्वामी जियो पिंड प्रभ आगे अनहत शब्द सुहावा सच मंगल हर जस गावा गुण गाए हर घर दुख नसे रहस उपजय मन कणा मन तन निर्मल देख दर्शन नाम प्रभ का मुखपणा होए रेण साधु प्रभ अराधु अपने प्रभावा बिनवंत नानक दया धारो सदा हर गुण गावा गुरमिल सागर तरिया हर चरण जगत निस्तरिया हर चरण त्याए सफल पाए मिटे आमन जाना पाए भगत सुभाए हर जप अपने प्रभावा जप एक अलख अपार पूरन तिस बिना नहीं कोई बिनवंत नानक गुर परम खोया जत देखा तत सोई पतत पावन हर नामा पूर्ण संत जना के कामा गुर संत पाया प्रभ तिहाया सगल इच्छा पुनिया हौ ताप बिनसे सदा सरसे प्रा मिले चिरी मछुनिया मन सांत आई वजी वधाई मनो कदे ना विसरे बिनवंत नानक सतगुर दरड़ाया।

की शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा। सदा सदा प्रभ को बलिहार नानक सतगुरु बाणा। ऐसा गुरवड भागी पाई है जित मिले प्रभ जापे राम। जन्म जन्म के किलबिख उत्तर है हर संत धूड़ी नित नापे राम। हर धूड़ी नाइये प्रभु ते आई है बाहुड़ जोन ना आई है। गुर चरणी लागे प्रम पौ पागे मन चिंदिया फल पाई है। हार गुण नित गाए नाम त्याए फिर सोग नहीं संतापे। नानक सो प्रभु जी का दाता पूरा जिस परतापे। हर हरे हर गुण निधे

काट काट अबनासी थान थनन तरसाई को नानक कार्य सगले पूरे गुर चरणी मन लाई सूही महला पंजवां कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी।

प्रीतम हर गुण सुनिए अबनासी राम। सुन सुन यो मन निर्मल होवे कटिए काल की फासी राम। कटिए जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सो ज्ञाना। हर हर जप जपिए।

गोपाल गाओ नित सखी हो, सगल मनोरथ पाए राम। सबल जन्म होआ मिल साधु, एक अंकार त्याए राम। जप एक प्रभु अनेक रव्या, सर्व मंडल छाया। ब्रह्मो पसारा ब्रह्म पसरिया, सब ब्रह्म दृष्टि आया। जल थल महियल पूर पूरन, तिस बिना नहीं जाए। देख दर्शन नानक बिसे, आप लए मिलाए। सूही महला पंजवा, आप चल नगर गोविंद गुरु का। नाम जपत सुख पाया राम। मन इच्छे से ही फल पाए, करते आप वसाया राम। करते आप वसाया सर्व सुख पाया, उत पाई सिख बेगासे। गुण गावे पूर्ण परमेसर, कार्ज आया रस। प्रभ आप स्वामी आपे रखा, आप पिता आप माया। कहो नानक सतगुर बलिहारी, जिन इहो थान सुहाया। कर मंदर हटनाले सोहे, जिस च नाम निवासी राम। संत भगत हर नाम अराध, कटिए जमकी फासी राम। काटी जम फासी प्रभ अवनासी, हर हर नाम तिहाए। सगल समग्री पूर्ण होई, मन इच्छे फल पाए। संत सज्जन सुख माने रलिया, दुख दर्द प्रमनासी। शब्द सुहारे सदगुर पूरे, नानक सदबल जासी। दात खसम की पूरी होई, नित नित चढ़े सवाई राम। पार

राम गुण गाए गोविंद अनद उपजे साध संगत संग बनी जिन उदम किया ताल केरा तिसकी उपमा क्या गनी आड़सर तीर्थ पुन किरिया महान निर्मल चारा पतत पावन बिरद स्वामी नानक शब्द अधारा गुण निधान मेरा प्रभु करता।

मेल है गुर शब्द बिचारा सच रते से निर्मल हौमे तज विकारा जिस तू मिले सो तुद मिले सो ईस त्यारा श्लोक महला तीजा सू विगे सूहा सब संसार है जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में चू

पौड़ी सच्चा अमर चलायून कर सतपुरमान सदा निचल रव रहा सो पुरख सुजान गुर प्रसादी सेविए सच शब्द निशान पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान आगम अगोचर अलख है गुरमखर जान श्लोक महला पहला नानक बदरा मालका भीतर तरिया आन खोटे खरे परखियन साहिब कै दीवान महला पहला नावन चले तीरथी मन खोटे तन चोर एक भाव लथी नात्या दोए पा चढ़िए सहोर बार तोती तूमड़ी अंदर विस निकोर साध पले अणनात्या

दीवा बले अंधेरा जाए, बेड़ पाठ मत पापा खाए, उगवे सूर न जापे चंद, जे ज्ञान प्रकाश अज्ञान मिटंत, वेद पाठ संसार की कार, पढ़ पढ़ पंडित करे विचार, बिन बूझे सब होए खुवार, नानक गुरमुख उतर सपार, महला पहला सब दे साधन आयो, नाम न लगो प्यार, रसना फिक्का बोलना नेत नित होए खुवार, नानक पय किरत कमावना।

पाई, अत्यंत नाम बसया मन आई, होमे माया शब्द जलाई, दर साचे गुरते शोभा पाई, जगदीश से वो में अवर ना काजा, अन दिन अंध होवे मन मेरा, गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाओ, मन की प्रतीत मन ते पाई, पूरे गुरते शब्द बुझाई, जीवन मरण को समसर विख है, बौड़ ना मरे ना जमपिख है, करही मैं सब कोट निधान, सदगुर दिखाए गया अभिमान, सदगी लागा सहज ध्यान, अनदिन गावे एको नाम, इस जुग में वड्याई पाई, पूरे गुरते नाम ते आई, जय दिखा तै रहा सुमाई, सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई, पूरे पाग गुर पूरा पाया, अंतर नाम निधान दिखाया, गुर का शब्द अत मीठा लाया, नानक त्रिशन भुजी मन तन सुख पाया।

अड़ परताप गुर प्रसाद न होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न होए सब थाई बूठे सब सुख पाए सब गुर तूठे पार ब्रह्म प्रापे रखवाले जिथे किथे दिसे नाले नानक दास

मुए अनाथ तुमरी शरणाई, कर कृपा कर चरण तिहाई। दया करो बसो मन आए, मुए निर्गुण लीजे लड़लाए रघाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी पीड़, हर सेवक नाही जा पीड़। सर्व दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ बसै। प्रभ का नाम मंतन आधार, विस्तृत नाम होवत तन सार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज, हर विसरत सब काम होता। चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब।

आप ही पुजारी आप ही देवा, आपे जोग आप ही जूता, नाग के प्रभ सदगी मुक्ता। बिलावल मोहल्ला पंजवा, आप उपावन आप सधरना, आप करामन दोष न लेना, आपन बचन आप ही करना, आपन विभो आप ही चरना। अरगाओ आप ही मस्त, आप ही बोलना, आप ही अशलना जाई शलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही काट काट आप अलिपना, आप पे अवगत आप संगरचना। कहो नानक प्रभु के सब जचना। बिलावल मोहल्ला पंजवा, फूले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रे हृदय गुर चरण प्यारे। रघाव काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुसो करत जन्म

जो जो निंद करे इन ग्रहण की इस आगे ही मारे करतार। नानक दास ता की शरणाई जा को शब्द अखंड अपार।

तो प्रसन्न पै सगुर प्रभु कज विघ्न नाथीय जा का अंग दयाल प्रभ ताकि सबदास सदा सदा वडियाईया।

अब सब करे कराया, पद पुनीत कणे करे ठाकुर बिरदाया। मद फूलो मानुख जान माया परमाया, नानक तिस पत राखसी जो प्रप है राया। बिलावल मोहल्ला पंजवा माटी तेजन साजया, कर दुर्लभ देखे अनक शिदर मन में टके निर्मल दृष्टेहे। क्यों बिस्तरे प्रा मने ते जिसके गुण एह, प्राप तज रचे जे आन स्यो सो रलिगे खेहे। रघाओ सिमरो सिमरो सास सास मत बिलम करेह, छोड़ प्रपंच प्रसुमरचो तज कूड़े नेह। जिन अनक एक बहु रंग किए है होसी एह, कर सेवा तस पार ब्रह्म गुरते मत लेहे। ऊचे ते ऊचा वड्डा सब संग बरनेह, दास दास को दासरा नानक कर लेह। बिलावल मोहल्ला पंजवा एक टेक गोविंद की त्यागी अनआस,

रगाओ औगद हर का नाम है जित रोग ना व्यापै साध संग मन तन हित फिर दुख ना जापै हर हर हर हर जापिए अंतर लिवलाई केल उतरे शुद्ध होए साधु सरनाई सोनत जपत हर नाम जस ताकि दूर बिलाई महामंत्र नानक कथ हर के गुण गाई बलावल महला पंजवां पए ते उपजे भगत प्राभ अंतर हुए सांत नाम जपत गोविंद का बिरसे परम प्रांत गुरपुरा जिसे फिटिया ताके सुख परवेश।

भगत आराध्य एक रंग गोविंद गोपाल राम नाम तन संचया जाका नहीं सुमार शरण परे प्रतेरिया प्रभु की वड्याई नानक अंत ना पाईए बेअंत गुसाई बिलावल मोहल्ला पंजवा सिमर सिमर पूर्ण प्रभु कार्ज पैरास करतारपुर करता वसै संतन कै पास रखाओ बिघन न को लागता गुर पै अरदास रखवाला गोविंद राय भगतन की रास तोट न आवे कदे मूल पूर्ण पंडार चरण कवन मन तन बसे प्रभ पगम अपार बस्त कमावत सब सुखी इस ऊन ना दिस संत प्रसाद पेटे प्रभु पूर्ण जगदीश है जय जयकार सभे करे सजथान सोहय जप नानक नाम निदान सुख पूरा गुर पाया बिलावल मोहल्ला पंजवा हर हर हर आराधिये होइए आरोग रामचंद की लिस्ट का जिन मारिया रोग रखाओ गुरपूरा हर जापिए नित कीचे भोग साध संगत कैवारणे मिलिया संयोग जे सिमरत सुख पाईए।

को नास, चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास। कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग कड़ सास रखाओ, मात पिता बंदब तू है तू सर्ब निवास। नानक प्रभ शरणागति जा को निर्मल जास, बिलावल मोहल्ला पंजवा सर्ब सिद्ध हर गाई है।

खोए खोए खोई हो मोको सतगुर मंत्र दरड़ाए अतुल अतुल अतुल न तुलिए भगत वशल कृपाए जो

गत नहीं पाई। क्या कथिए किस कथन ना जाई, जय जय देखा तय रया समाई रखाओ। जय महा भयान दुख जम सुनिए, तय मेरे प्रभु तू है सगाई। शरण परे उहर चरण गए प्रभ, गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल मोहल्ला पंजवा, आगम रूप अवनाशी करता, पातत पवित एक निमख जपाइए। आचरज सुनियो प्रात फेट ले, संत चरण चरण मन लाइए। कित विधिये कित संजम पाइए, कौ सुरज।

पंजवा ऐसे काहे फूल परे करे करावे मुकर पावे पेखत सुनत सदा संघरे रखाओ काज भ्याजन कंचन छाडन बैरी संग हेत साजन त्याग करे होमन कौरा अनहोमन मीठा दिखिया मैं लबटाए जरे अंध कूप मैं परे हो प्राणी परम गुबार मुह बंद परे कहो नानक प्रभुत दयारा गुर पीटे काढ़े वहां भरे बिलावल महला पंजवा मन तरसना हर चीना पै आनंदा मिटे अंदेसे

चरण गहे आम न जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपो होए पजो जगदीश इहो पदार्थ वड भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रदाते निर्मल जस नानक दास कहे बिलावल महला पंजवा सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ कही ना पहुंचे सुलही होए मुआ ना पाक रखाओ काट कुठार खसम सिर काटिया खिन में होए गया है खाक मंदा चितवत चितवत पचया जिन रचिया तिन दीना ताक पुत्र मीत तन किशु न रहो तो छोड़ गया सा पाई साक कहो नानक तिस प्रभ लिहारी जिन जन का कीनो पूर्ण वाक बलावल मोहला पनवा पूरे गुर की पूरी सेव

मूला नस्यो प्रीत बनी अरहाओ तोरी ना टूटे शोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंच तनी दिन सरैन मन माहे बस्त है तू कर कृपा प्रवे अपनी बल बल जाओ श्याम सुंदर को आकथ कथा जाकी बात सुनी जन नानक दासन दास कहित है मोहे करो कृपा ठाकुर अपनी बिलावल महला पंजवा हर के चरण जप जाओ कुर्बान गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर ताका हिरदे तर मन ध्यान रखाओ सिमर सिमर सिमर सुखदाता जाका किया सगल जहान रसना रबो एक नारायण ताती दरगे पावो मान साधु संग प्राप्त जाको तिन्ही पाया इहो निधान गावो गुण कीर्त नित स्वामी कर कृपा नानक दीजे दान बिलावल महला पंजवा राख लिगे सतगुर की शरण जय जयकार हो आज अंतर पार ब्रह्म तेरो तारण तरण रखाओ विश्वम पर पूर्ण सुखदत्त सगल समग्री पोखण परण थान तनंतर सर्व नरंतर बल बल जाई हर के चरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करण आद जुगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं डरण।

जो जो कीनो सो तुम जानेओ, पेख्यो ठौर नाही कछ तीठ मुकरण, बड़ प्रताप सुनो प्रभु तुमरो, ओड़ अगा तेरो नाम हरण।

दूत दुट सब होए खया। गुण अवगुण प्रकश ना बिचारियो, कर कृपा अपना कर लया। अतुल बड़ाई अचुत अबनासी, नान कुचरे हर की जया। बिलावल मोहल्ला पनवा, बिन पय भगती तरन कैसे। करो अनुग्रोपत उदाहरण, राग स्वामी आप परोसे रघाव। सिमर नहीं आवत फिरत मदमावत, दिख्या राता स्वान जैसे। औद विहावत अधक मुहावत, पाप कुमावत बुढ़े ऐसे। शरण दुख पंजन पुरख नरंजन, साधु संगत रमन जैसे। केशव कलेश नास अग खंडन, नानक जीवत दर्श दिसे।

आपे मेल लए, जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। तज अवमान अरचिंत बैरानी साधे शरण पए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तांते रोग खय। महामुख अजान अज्ञानी रखे तार दए, कहो नानक गुरपुरा फिट्यो आमन जान रहे। बिलावल मोहल्ला पंजवां, जीवो नाम सुनी जो सो प्रसन्न पए गुरपुरे, ता मेरी आस पुन्नी रखाओ। पीर गई बंदी मन तीरा मोयो अंध तुनी, उबजो चाओ मिलन प्रा प्रीतम रहन ना जाए खिनी। अनक भगत अनक जन तारे तिमरे अनक मुनी,

रूप त्याभो नानक द्वारे आयो तौ मैं ललन पायोरी। मोहन रूप दिखावे आम नींद सुहावे ता मेरी तिखा बुझानी आव मैं सहज समानी मीठी तरह कहानी। मोहन लालन पायोरी अरहाओ दूजा बिलावन महला पंजवा मोरी अंग जाए दर्शन पावत हे राचो नाथ की सहाई संतना आव चरण गहे रखाओ आहे मन अवरना भावे चरनावे चरनावे। उलज्यो आलम करंद कमल ज्यो आनस नहीं चाहे एके हर लाहे अन ते टूटीए रिख ते छूटीए मान हरस कूटीए संग साधु उल्टीए अन नाही नाही रे नानक प्रीत चरण चरण हे। राग बिलावल महला नावा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुखरता हर नाम पछानो अजामल गण का जे सिमरत मुक्त पय जी जानो। रघाव गज की त्रास मिट्टी छिन्हू मैं जब ही राम बखानो नारद कैत सुंदर बारक भजन माए लबटानो अचल अम निरपय पद पायो जगत जाए हैरानो। नानक कैत भगत रशक हर निकट ताए तुम मानो बिलावल महला नामा हर के नाम बिना दुख पावे भगत बिना सहसा न चूके गुर ए पेद बतावे। रघाव कहां पयो तीर्थ व्रत किए आराम सर नहीं आवे जोग जग निफल ते मानो जो प्रजस बसरावे।

लेहो लड़लाए, नानका नाम ते आए, दीना नाथ दयाल मेरे स्वामी, दीना नाथ दयाल जाचो संतरवाल रखाओ, संसार विखिया कूप ताम अज्ञान मोहत कूप, गय पूजा प्रभ जी लेहो, हर नाम अपना देहो, प्रभ तुझ बिना नहीं चाहो, नानका बल बल जाओ, लोभ मोह बादी देहे, बिन भजन होवत खेहे, जमदूत महापयान चित गुप्त कर्म है जान, देन रैन साध सुनाए, नानका हर शरणाए, पय पंजना मुरार, कर दया पतत उधार, मेरे दोख गने ना जाहे, हर बिना कते समाहे, गए ओट चितवी नाथ, नानका दे रख हाथ, हर गुण दे गोपाल, सर्व कड़ प्रतपाल, मन प्री दर्शन प्यास, गोविंद पूर्ण आस, एक निमख रहन ना जाए, वड़भाग नानक पाए, प्रभ तुझ बिना नहीं होर, मन प्रीत चंद चकोर, जो मीन जल सुवेत, आल कमल पिन ना पेत, जो चकवी सूरज आस, नानक चरण प्यास, जो तरन परत परान, जो लोभिगे तन दान, जो दूध जले संजोग, जो मां खुदिया रस भोग, जो माद पूते हेत, हर सिमर नानक नेत, ज्यों दीप पतन पतंग, ज्यों चोर हिरत निसंग, मैगले कामे बंद, ज्यों ग्रस्त बखई तंद, ज्यों जुआर बिसन ना जाए, हर नानक इहो मन लाए, कुरंक न देने हो, चात्रक चाहत में हो, जन जीवना सत्संग, गोविंद भजना रंग, रसना बखाने नाम, नानक दर्शन दान, गुण गाए सुन लिख दे, तो सर्व फल हर ले, और समूह करत उधार, संसार उतर सपार, हर चरण भोजित ताहे, मिल साध संग जस गाहे, हर पैज रखे मुरार, हर नानक शरण दो।

तृतीय ब्रह्मा विष्णु महेशा देवी देवोपाय वेशा ज्योति जाति गणतन आवे जिन साजी सो कीमत पावे कीमत पाए रहया भरपूर किस नेड़े किस आखा दूर चौथ उपाय चारे बेदा खानी चारे बाणी फेदा अष्ट दिशा खड़ तीन उपाय तो बूझे जिस आप बुझाए तीन समावे चौथे वासा वरुण तनानक हमता के दासा पंचमी पंच पूत बेताला आप अगोचर पुरख निराला एक परम भूखे मोह प्यासे एक रस चाख सब तृप्ता से एक रंग राते एक मरतूर एक दार कर साचे देख हदूर झूठे को नाही पदनाओ तब न सूचा काला काओ पिंजर पंखी बंदिया कोए शेरी पर में मुक्त न होए तौ छूटे जा खदम छिड़ाए गुरमत मेले पग दरड़ाए खष्टी खट दर्शन प्रसाजे अनहद शब्द निराला वाजे जे प्रापावे ता महल बुलावे सब दे फेदे तौ पद पावे कर कर वेश खपे लै जावे साचे साचे साच समावे सप्तमी संतोख शरीर सास मुंद परे निर्मल नीर मजन शील सजरदे विचार गुर के शब्द पावे सा पार मन साचा मुख साचो पाए सच निशाने ठाक न पाए अष्टमी अठ सिद्ध बुद्ध साधे सच ने केवल कर्म आराधे पौन पानी अग्नि बिसराओ तही निरंजन साचो नाओ तिसमें मनुआ रहा निभ लाए परुण तनानक काल न खाए नाओ नौमी नवे नाथ नव खंडा कड़ कड़ नाथ महाबलवंडा आई

मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे तो भाई सो मेरा वीर मेल मिल सकी गुण कहो मेरे प्रभ के ले सतगुर की मत धीर जन नानक की हर आस पुजावे।

लूट लेहे सागत पद खोवे सात जना पग मल मलत होवे पांच पूत जने एक माए ओत पुज खेल कर जगत विहाए तीन गुणा के संग रच रसे इनको छोड़

नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन बस अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास कही गोंड मोहल्ला पंजवां जा को राखे रखनहार इसका अंग करे निरंकार रहाओ माद गर्भ में अगना जोहे।

राम रतन पसे मन आए, सफल जन्म ताका परवान पार ब्रह्म निट कर जान। भाए भगत प्रभु कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रहूं सचवा पार। दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तूर। राग गूंड अष्टपदियां, महला पंजवां कर दूजा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, कर नमस्कार पूरे गुरुदेव, सबल मूर्त।

संत जपे गुर दियो भगवंत, संगत के मुख उज्जल भए, सगल थान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाहे, पार ब्रह्म गुर बे परवाहे।

जैसे गाय का बाछा छूटला, थान चोखता माखन कूटला, नाम दियो नारायण पाया, पुर पीड़त अलख लखाया। जैसे बिखे हिद परनारी, ऐसे नामे प्रीत मुरारी, जैसे तापते निर्मल कामा, तैसे राम नामा।

अंत जो जुगतार उब जो ज्ञान हुआ परगास पर कृपा लीने कीटदास कौरवदास तप्त सेना चूकी जब मुकंद सेवा ताहू की गोंड जे ओ अड़सठ।

कोई नाम जपे जप माली लागे तिसे ध्याना अभी कभी किशु ना जाना तेरा एको ना पछाना ना जाना हरे मेरी कमन गते हम मूर्ख अज्ञान शरण प्र तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रखाओ कभू जीड़ा उब चढ़त है कभू जाए पयाले लोभी जीड़ा थिरना रहत है चारे कुंडा पाले मरण लखाए मंडल मैं आए जीवन साझे माई एक चले हम देखे स्वामी पाए बलंती आई ना किसी का मीत ना किसी का भाई ना किसी बाप न माई परम तनांग जे तू देव है अंते हुए सकाई राम कली मोहल्ला पहला सर्व जो तेरी पसर रही जय जय देखा तय नर हरी जीवन तलब निवार स्वामी अंधकूप माया मन गाडया क्यों कर उतरो पार स्वामी रखाओ जय भीतर कड़ भीतर बसया बाहर काहे नाही तिन की सार करे नित साहिब सदा चिंत मनवाही आपे नेड़े आपे दूर आपे सर्ब रहा भरपूर सतगुर मिले अंधेरा जाए जय देखा तय रहा समाए अंतर सहसा बहार माया नैनी लागस बाणी अरुणत नानक दासन दासा प्रतापेगा प्राणी राम करी मनला पहला जे दर वसे कमन दर कही है दरा पीतर दर कमन लहे जे दर कारण फिरा उदासी सो दर कोई आए कहे किन बेसा गर तरी है जीव तिया न मरगे रगाव दुख दरवाजा रोहर खवाला आसा अंदेसा दुए पट जड़े माया जल खाई पानी कर बांधया सत के आसन पुरख रहे किंते नामा अंत न जानिया तुम सर नाही अवर हरे ऊंचा ने कहना मन में रहना आपे जाने आप करे जब आसा अंदेसा तब ही क्यों कर एक कहे आसा पीतर रहे निराशा तो नारग एक मिले एन विद सागर तरिये जीव त्या मरिये रहाओ दूजे

बूंद में सागर कवन बुझे बिद जाने, ओत खुश चलते आप कर चीने, आपे तत पछाने। ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिस्ते मुक्त परम गत होई रहाओ। दिन में रहन रहन में दिनियर, उसन सीध बिद सोई, ताकि गत मित अवर ना जाने, गुर बिन समझ न होई। पुरख में नार नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी, तुन में ध्यान ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। मन में जोत जोत में मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तिनकै सद बलिहारी, जिन एक शब्द ले बिलाई।

तुम मैं मान कलाला, तुम देव उत्ते संक न मान हो, हम पुंचे सदा निहाला, हम बारक तुम पिता हमारे, तुम मुख देव खीरा, हम खिल है सब लाड लडाव है, तुम स गुणी गहीरा, तुम पूर्ण पूरे है संपूर्ण, हम पी संग अघाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहया, नानक कहन न जाए, राम कली महला पनवा, कर कर ताल पखाव ज नयन हो, माथे वजे रबाबा, करनो मध बांसुरी बाजे, जेवा तुन आ गाजा, नृत करे कर मनुआ नाचे, आने कुगर साजा, राम को नृतकारी, पेखे पेखन हार दयाला, जेता सा सीगारी रघाओ, अखार मंडली तरण सबाई, ऊपर गगन चिंदोआ, पनम चूला करत अकेला, जल ते उपत हुआ, पंच तत कर पुत्रा कीना, किरत मिलावा हुआ, चंद सूरज दो जरे

जिसे सहाई होए भगवान अनक जतन ओ आके सरंजाम रहाओ करता राखे कीता कौन कीरी जीतो सगला पवन बेअंत महिमा।

रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनक रूप रंग भोग रस गुरमुख नाम निमख हृदय बस हर के नाम की वड्याई कीमत कहन न जाई रखाव तोर वीर तीरज मद पूरा तेज समाध तुन गैर गभीरा सदा मुक्त ताके पूरे काम जा कर दिवसे हर नाम सगल सुख आनंद अरोग समदर्शी पूर्ण निर्जोग आए न जाए डोले कत नाही जा के नाम बसे मन माही दीन दयाल गोपाल गोविंद गुरमुख जपिए।

संग पवजल तरिगे प्रभु के रंग देही तोय न उतरै मायल होमे व्यापे दुबदा फैल हर हर औखद जो जन खाए ताका रोग तगल मिट जाए

हर शरण मन तन हर ओई ते आया, आनंद हर रूप दिखाया। तिसी की ओर सदीव जाके किन्ने गए जीव, सिमरत हर करत निधान, रखन हार निदान। सर्व की रेण होवी जे आप।

सागर तरियो बाशर खोज, खेद न पायो नए पुनरोज। सिंध समायो कट के माघे, करण हार कहो किश अज जनाघे। जो छूटो तो जाए पयाल, जो कढ़ो तो नजर निहाल। पाप पुन हमरे वस नाहे, रसक रसक नानक गुण गाहे। राम कली मोहल्ला पंजवा, ना तन तेरा ना मन तोहे। माया मोहे बया पिया तोहे, उदम करे गाडर जो शेल। अचिंत जाल काल चक्कर पेल, हर चरण कमल सरनाए मना। राम नाम जप संग सहाई, गुरमुख पावे साज तना रहाओ। ऊने काज न होत पूरे, काम क्रोध मद सदगी चूरे। करे विकार जीरे के ताई, गाफल संग न तसुआ जाई। तरत तो अनक छल जाने, कौडी कौडी को खाग सिर छाने। जिन दिया तसे न चेते मूल, मिथ्या लोभ न उतरे सूल। पार ब्रह्म जब पय दयाल, जो मन हुआ सादरवाल। हस्त कमल लड़ली नू लाए, नानक साचे सा समाए। राम कली मोहल्ला पंजवा, राजा राम की शरणाए। निरपो पय गोविंद गुण गाव, साध संग दुख जाए रघाव। जाके राम बसे मन माही, तुझन दुत्र पेखत नाही। सगले काश वारे अपने, हर हर नाम रसनित जपने। जिसके मस्तक हाल गुर तरे, तो दास अंदेशा काहे करे। जन्म मरण की चूकी कान, पूरे गुर ऊपर कुर्बान। गुर परमेश्वर पेट निहाल, तो दर्शन पाए जिस होए दयाल। पार ब्रह्म जिक्र पा करे, सा संग सो पव जल तरे। अमृत पीवो साध प्यारे, मोह खूजल साते दरबारे। अंध करो ताज सगल विकार, नानक हर जप उतरो पार। राम कली मोहल्ला पंजवा, ईंधन ते बैसंतर भागे। माटी को जल दह दिस जागे, ऊपर चरण तले आकाश। कड़मे सिंध की ओ प्रगास, ऐसा समर्थ हर जीव आप। निमकन बिसरे जी भगतन कै, आठ पैर मनता को जाप रहाओ। प्रथमे माखन पाछे दूध, मैलू कीनो साबन सूध। पय ते निरपो डरता फिरे, हुंदी कौ अणहुंदी हिरे। देही गुप्त बदेही दीसे, सगले साज कर जग दीसे। ठगन हार अन ठगदा ठगे, बिन वखर फेर फिर उठ लागे। संसवा बिन करो बखियान, सिमरत शास्त्र वेद पुराण। ब्रह्म विचार विचारे कोय, नानक ताकी परम गढ़ होय। राम कली मोहल्ला पंजवा, जो तुझ पावे सो थिया। सदा सदा हर की शरणाई, प्रभन नाही आन बिया। रहाओ पुत कलतर लक्ष्मी दीसे, इन में किशु न संग लिया। विखे ठकोरी खाए पुलाना, माया मंदिर त्याग गया। निंदा कर कर बहुत विगूता, गर्भ जो में कृत पया। पूर्व कमाने छोड़े नाही, जम दूत ग्रास्यो महा भया। बोले झूठ कमावे अवरा, तिसना बूझे बहुत हया। असाद रोग उपजिया संदूखन, दे बिनासी महा खया। जिन्हें निवाजे तिन ही साजे, आपे कीने संत जया। नानक दास कंठ लाए राखे, कर कृपा पार ब्रह्मया। राम कली मोहल्ला पंजवा, ऐसा पूरा गुरुदेव सगाई। जाका सिमरन तिरथा ना जाई रघाओ, दर्शन पेखत होए निहाल। जाकी तूर काटे जमजाल, चरण कमल बसे मेरे मन के। कार्ज सवारे सगले तन के, जाके मस्तक राखे हाथ। प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, पतत उदाहरण कृपा निधान। सदा सदा जयगे कुर्बान, निर्मल मत दे जिस दान। तजे विकार बिन से अपमान, एक तिहाई के साध के संग। पा बनासे नाम कै रंग, गुर परमेश्वर सगल निवास। कट कट रब रया गुणतास, दर्श दे तारो प्रव्यास। नित नानक चितवे सच अरदास।

नाम जपत परम सुख पाइये, आवा गौण मिटे मेरे मीत रखाव, गुण गावत हो प्रगास, चरण कमल में होए निवास, संत संगत में होए उधार, नानक भवजल पुत्र सपार, राम कली महला पंजवां, गुरपूरा मेरा गुरपूरा, राम नाम जप सदा सुहेले, सगल बिना से रोग कूरा रखाओ, एक अराध हो साचा सोए, जा की शरण सदा सुख होए, नींद सुहेली नाम की लागी भूख, हर सिमरत दिन से सब दुख, सहज आनंद करो मेरे पाई, गुरपूरे सब चिंत

का पतला जोगी जिसमें रोग वड्डा तह नाम आया अनेक जतन पे करे जोगी रोग न जाए गवाया हर का नाम औखध है जोगी जिसनु मन नमसाए गुरमुख होवे सोई बूझे जोग जुत सो पाए जोगे का मार्ग दिखमय जोगी जिसनु नदर करे सो पाए अंतर भार एको वेखे विचो परम चुकाए विण वजाई किंगरी वाजे जोगी सा किंगरी वजाए कहे नानक मुक्त होवे जोगी साचे रह समाए राम कली महला तीजा भगत खजाना गुरमुख जाता सगुर बूझ बुझाई संतो गुरमुख दे वड्याई रहाओ सच रहो सदा सहस उपजे काम क्रोध विचों जाई आव छोड़ ना मिल लागी ममता सब जलाई जिते उपजे तिसते बिनसे अंते नाम सकाई सदा हजूर दूर न देखो रचना जे नरचाई सच्चा शब्द रवे कट अंतर सच्चे सिंह लवलाई सत संगत मैं नाम निर्मोल वडे भाग पाया जाई परम ना भूलो सतगुर सेवो मन राखो इकठाई बिन नावे सा भूली फिरदी बिरता जन्म गवाई जोगी जुत गवाई हंड पाखंड जोग ना पाई शिव नगरी में आसन बैसे गुर शब्दी जोग पाई तातर बाजी शब्द निवारे नाम से मन आई यो शरीर सर्व रखे संतो स्नान करे लवलाई नाम स्नान करे से जन निर्मल शब्दे मैल गवाई त्रै गुण अचेत नाम चेते नाही बिन आवे बिन सजाई ब्रह्मा बिसन महेश त्रै मूर्त त्रै गुण परम भुलाई गुर प्रसादी त्रिगुटी छूटे चौथे पद लिवलाई पंडित पढ़े पढ़वाद वखाने तिना बूझ ना पाई बिखिया माते परम भुलाए उपदेश कहे किस पाई भग जना की उत्तम बाणी जुग जुग रही समाई बाणी लागे सोगत पाए शब्दे सच समाई काया नगरी शब्दे खोजे नाम नवंग निध पाई मनसा मार मन सह समाना बिनस उस्त कराई लोयन देख रहे विस्मादी चित अधिष्ट लगाई अधिष्ट सदा रहे निरालम ज्योति ज्योत मलाई हाँ गुर सराई सदा अपना जिन साची बूझ बुझाई नानक एक कहे बेनंती नावो गत पद पाई राम कली महला तीजा हर की पूजा दुलंब है संतो कहना कछु न जाई संतो गुरमुख पूरा पाई नामो पूज कराई रखाओ हर बिन सब कुछ मैला संतो क्याहो पूज चढ़ाई हर साचे पावे सा पूजा होवे पाणा मन नमसाई पूजा करे सब लोग संतो मनमुख थाए न पाई शब्द मरे मन निर्मल संतो ए पूजा थाए पाई पवित्र पावन हे जन साचे एक शब्द लिवलाई बिन नावे होर पूज न होई परम पुली लोकाई गुरमुख आप शाणे संतो राम नाम लिवलाई आपे निर्मल पूज कराए गुर शब्दी थाए पाई पूजा करे पर विद नहीं जाने दूजे पाए मल लाई गुरमुख होवे सो पूजा जाने पाणा मन नमसाई पाणे ते सब सु पावे संतो अंते नाम सकाई अपना आप ना पछाणे संतो कूड़ करे वड्याई पाखंड कीने जमनी छोड़े ले जा सी पत गवाई जिन अंतर शब्द आप पछाणे गत मित तिनही पाई यो मनुआ सुन समाध लगावे जो तीजोत मलाई सुन सुन गुरमुख नाम वखाणे सत संगत मेलाई गुरमुख गावे आप गवावे दर साचे शोभा पाई ताची बाणी सच वखाणे सच नाम लिव लाई पए पंजन अद पाप नखंजन मेरा प्रभु अंत सकाई सब कुछ आपे आप वरत नानक नाम वड्याई राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील आत अभमानी मिल शब्दे मेल उतारी संतो गुरमुख नाम निस्तारी सच्चा नाम से आकट अंतर करते आप सवारी रघाव पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा तारी एक पेद करे फिर अभमानी दिन जुए बाजी गारी एक अंदन भगत करे दिन राती राम नाम उर तारी अंदन राते सहजे माते है देखो मैं मारी भय बिन भगत न होई कभी भय पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत् बिचारी आपे आप कराए करता आपे बक्स पंडारी इस क्या गुणा का अंत न पाया हों गामा शब्द विचारी हर जीव जपी हर जीव सालाही विचों आप निवारी ना पदार्थ गुर ते पाया अखुट सते पंडारी अपने आप भगतां नूं आपे तुठा अपनी कृपा कर कलधारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गामन शब्द विचारी जियो पिंड सब किछ वै तिसका
आखण बिखम बिचारी शब्द लगे सही जन निस्तरे भौजल पार उतारी बिन घर साचे को पार न पावे बूझे को विचारी जो तुर लिखया सो ही पाया मिर हार शब्द सवारी काया कंचन शब्द राती साचे नाए प्यारी काया अमृत रही पर पूरे पागे शब्द विचारी जो प्रभ खोजे सही पावे और फूट मुए अंकारी बादी बिन से चेप सेवे गुर के हेत प्यारी सो जोगी तत् ज्ञान विचारे हमें तिस नाम मारी सगुर दाता तने पिछाता जिसनु कृपा तुम्हारी सतगुर ना सेव है माया लागे डूब मुए अहंकारी जिचर अंदर सास चित्र सेवा की जय जाए मिल गए राम मुरारी अन दिन जाग तरह दिन राती आपने प्रेपीत प्यारी तन मनवारी वार कुमाई अपने गुर बिट्टो बलिहारी माया मोह बिन सजाएगा उबरे शब्द विचारी आप जगाए सही जागे गुर के शब्द विचारी नानक सही मुए जे नाम ना चेते फल जीवे विचारी राम करी मोहल्ला तीजा नाम खजाना गुर ते पाया तृप्त रहे आगाही संतो गुरमुख मुक्त गल पाई एक नाम से आकट अंतर पूरे की वडियाई रखाव आपे करता आपे पुहता देंदा रिजक सबाई जो कुछ करना सो करया अवर न करना जाई आपे साजे सिर चुपाए सिर सिर तंदे लाई इस सिरे भो तां सुख पाव सतगुर मेल मलाई अपना आप आप उपाय अलख न रखना जाई आपे मार जी वाले आपे जिसनु तिल ना तुमाई एक दाते एक मंगते कीते आपे भगत कराई छेवड़ पागी जिनी एक को जाता सत्य रहे समाई आप शुरू से आना आपे कीमत कहन न जाई आपे दुष पाए अंतर आपे परम फुलाई वड्डा दाता गुरमुख जाता निगुरी अंध फिरे लोकाई जिनी चाखिया तिना साध आया सगुर बूझ बुझाई एक ना ना वो आप भुलाए एक ना गुरमुख दे बुझाई सदा सदा साला है हो संतो जिदी वड्डी वड्याई जिसमें अवर न कोई राजा करत पावस बंत मनाई न्याओ तसे कहे साचा विरले हु मनाई इसनु प्राणी सदा त्याव हो जिन गुरमुख बंत बनाई सगुर पेटे सोजन सीजे जिस हिरदे नाम साई सचा आप सदा है साचा बाणी शब्द सुनाई नानक सुन वेख रहा विस्मात मेरा प्रभ रविया सर्वथाई राम कली महला पंजवां अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद किन्ही किया प्रवृत पसारा किन्ही किया पूजा विस्तारा किन्ही निवल पोयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा प्यारे आ ना जा ना वेसा रहाओ किन्ही ग्रियो तय बणखण पाया किन्ही मोर अधूस सदाया होई कहतो आनन पहोती मोहे दीन हर हर ओढ़ लीती किन्ही कया हो तीर सवासी कोई अन तज पया उदासी किन्ही पौन सब धरती करया मोहे दीन हर हर दर परया किन्ही कया मैं कुले वडे आई किन्ही कया बाबो पाई कोई कह मैं तरे पसारा मोहे दीन हर हर आधारा किन्ही कुगर नृत कराई किन्हू वर्तने माला पाई किन्ही तिलक गोपी चंदन लाया मोहे दीन हर हर हर चाया किन्ही सिद्ध बो चेटक लाए किन्ही पीग बो थाट बनाए किन्ही तंत मंत बो खेवा मोहे दीन हर हर हर सेवा कोई चतर कहावे पंडित को खट कर्म सह स्यो मंडत कोई करे आचार सुपरणी मोहे दीन हर हर हर सरणी सगले कर्म धर्म जुग सोधे बिन नावे ओ मन्ना प्रबोधे कहो नानक जो साह संग पाया बूझी तिसना महा सीत लाया राम कली महला पंजवा इस पानी ते जिंतु करया माटी काले दिहोरा करया उगत जोत ले सुरत परीखया माद गर्भ में जिंतु राखया राखन हार समार जना सगले छोड़ बीचार मना रहाव जिन दिए तुद बाव महतारी जिन दिए प्राद पुतहारी।

रोग सोग परमीजा ताहू पवन तार जात बेगाए संत बेगावे कीर्तन गाए ताऊ बेगावे दिन रैन चाल ताऊ बेगावे सो पिड़माल ताऊ बेगावे बाल पढ़ावत संत बेगावे हर जगावत ताऊ बेगावे नट नाटक निरते ताऊ बेगावे जिया ए हिरते ताऊ बेगावे राज मैंडरते संत बेगावे हर्ज करते ताऊ बेहावे मता मसूरत ताऊ बेहावे सेवा जरूरत ताऊ बेहावे सोधत जीवत संत बेहावे हरस पीवत जित को लाया तित ही लगाना ना को मूड़ नहीं को स्याना कर कृपा जित दे वे नाओ नांग ताके बल बल जाओ राम कली महला पंजवा दावा अग्न रहे हर बूट माद गर्भ संकट ते छूट जाका नाम सिमरत पो जाए तैसे संत जना राखे घर राय ऐसे राखन घर दयाल जत का देखो तुम प्रतपाल रखाओ जल पीजो तिखा मिटंत तन बिसे ग्रे आवत कंत लोभी का तन प्राण आधार त्यों हर जन हर घर नाम प्यार किसानी जो राखे रखवाला मात पिता दया जो बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राखे कंठ लाए जो अंधले पेगत होए आनंद गूंगा भगत गावे बहुचंद पिंगल पर्वत परते पार हर के नाम सगल उदार जो पावक संग सीत को नाश ऐसे प्राशित संत संग विनाश जो साबन पापर उजल होत नाम जबत ता प्रम पखोत जो चक्री सूरज की आस जो चात्रक बूंद की प्यास जो कुरंक नाद कर्ण समाने त्यो हर नाम हर जनमाने सुखाने तुमरी कृपा ते लागी प्रीत दयाल पहता आए चीत दया तारी तन तारण हार बंधन ते होई छुटकार अवथान देखे नैन अलोय जिबन दूजा अवर न कोय प्रम पे छूटे गुर प्रसाद नानक पेख्यो सब समात राम कली महला पंजवा जी जंत सब पेखिये प्रसगल तुम्हारी तारना यो मन हर के नाम पधार ना रहाओ खेन में ताप उतापे कुदरत तब करते के कारना ताम क्रोध लोभ चूड़ निंदा साधु संग बिदारना नाम जत मन निर्मल होवे सुखे सुख गुदारना भगत शरण जो आवे प्राणी तिस ईहा उहा ना हारना सुख दूस मन की बिरदा तुम ही आगे सारना तू दाता सबना जिया का अपन की आप पालना अनकबार और जन ऊपर नानक वंजे वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दर्शन पेड़त पाप सब नस हरस्यो दे मिलाई मेरा गुर परमेश्वर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते हुए सुखाई रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत तूर मुख लाई पद पुनीर किए खिन पीतर अज्ञान अंधेर वंजाई कारण कारण समरथ स्वामी नांग तिसरणाई बंधन तोड़ चरण कम दृढ़ाए एक शब्द लिवलाई अंध कू बिखिया ते काढ़ियो साच शब्द बने आई जन्म मरण का सिरसा चूका बहौड़ कतो ना ताई नाम रसायन इव मनाराता अमृत पी त्रिवताई संत संग मिल कीर्तन गाया नित लव से आ जाई पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिन आन ना पाई नाम धन पाया वडभागी नानक नरक न जाई काल सियान पुगतना मेरी पूरे गुरु कमाई जत स संजम सुच गए सोई आपे करे कराई पुत्र कलत्र मां बिखिया मैं गुर साते लाए तराई अपने जीते आप संभाले आप लिगे लड़लाई साज तर्म का बेड़ा बंधया अवजल पार पवाई बेसुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई अकाल मूर्त अजोनी संभो कल अंधकार दीपाई अंतर जामी जीवन का दाता देखत तृप्त अगाई एकंकार निरंजन निरपो सब जलत रहा सुमाई भगत दान भगता को दीना हर नानक जाते माई राम कली महला पंजवा श्लोक सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक मन तारा ताराम प्यारे हर प्रेम भगत बन आई संतो सदगुर खेप निवाही संतो हर नाम लाहा दास को दिया सगली त्रिसन उलाही संतो रहाओ खोजत खोजत लाल एक पाया
ਹਰ ਕੀਮਤ ਪਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਸੰਤੋ, ਚਰਨ ਕਮਸਿਓ ਲਾਗੋ ਧਿਆਨਾ, ਸਾਚੇ ਦਰਸ ਸਮਾਈ ਸੰਤੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਗਾਵਤ ਪਏ ਨਿਹਾਲਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਈ ਸੰਤੋ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਰਵਿਆ ਸਭ ਅੰਤਰ, ਕਤ ਆਵੇ ਕਤ ਜਾਈ ਸੰਤੋ, ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਹੈ ਪੀਹੋ ਸੀ, ਸਭ ਜੀਆਂ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ਸੰਤੋ, ਆ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈਏ, ਪੂਰਿਆ ਸਭ ਠਾਈ ਸੰਤੋ, ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਸੁਤ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਬਾਪ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸੰਤੋ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੀ, ਭੂਮਣ ਕੇਰ ਮਾਤ ਬਿਗੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰੀ, ਰਗਾਓ ਅੰਤਰ ਸੂਖਾ ਬਾਹਰ ਸੂਖਾ, ਹਰ ਜਾ ਮਲਨ ਪਏ ਸੁਟਾਰੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਲਾਗੇ ਤਨੇ ਨਿਵਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਉਧਰੇ ਸੰਤ ਪਰੇ ਹਰ ਸਰਣੀ, ਭਜ ਬਿਰਸੇ ਮਹਾਂ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਇਓ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਇਕ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਅਧਾਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਣਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋ ਤੁਮਾਰੀ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ, ਰਵਿਆ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ, ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਕਰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰੀ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਨਾਨਕ ਵਡਿਆਈ, ਤੇਰਿਆਂ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰੇ ਨਾਰੀ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ, ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਵਾਮੀ।

करता तेरे सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिरत सदा तेरी नाम मन नमसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आय वसया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिदिया ए वडियाईया कहे नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित करस पागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कहो से नाम हर कहे लागे कहे नानक तहे सुख हुआ तित कर अनहद वाजे साची लवे बिन दे निमाणी लवे बाजहो क्या करे वेचारिया तुद बा समर्थ कोए नाही कृपा कर बनवारिया केस नौ होर था नाही शब्द लाग सवारी।

आठ पैर अपना प्रभु सिमरे, एको नाम त्याए राम, त्याए सो प्रोतरे पवजल रहे आमन जाना, सदा सो कल्याण कीर्तन प्रा लगा मीठा पाना, सब इश कुन्नी आस पूरी मिले सदगुर पूरिया, बिनवंत नानक प्रभ आप मेले फिर ना ही दुख बसूरिया। राम कली मोहल्ला पंजवा शांत श्लोक, चरण कमल शरणागति अंत मंगल गुण गाम, नान प्रभ आराधिये विपत निवारण राम शांत, प्रभ विपत निवारण त्रिवन अवरना कोए जियो, सदा सदा हर सिमरिये जल थल महियल सोए जियो, जल थल महियल पूर रहया एक निमक मनो ना विसरे, गुर चरण लागे दिन सुभागे सर्व गुण जगदीसरे, कर सेव सेवक दिन सरैणी पावे सो होए जियो, बल जाए नानक सुखे दाते प्रकाश मनतन होए जियो। श्लोक, हर सिमरत मन तन सुही बिरसी दुतिया सोच, नानक टे गोपाल की गोविंद संकट मोच, शंत पै संकट काटे नारायण दयाल जियो, हर गुण आनंद गाए प्रभु दीनानाथ प्रदपाल जियो, प्रदपाल अचुत पुरख एको तिसे स्यो रंग लागा, कर चरण मस्तक मेल लीने सदा आनंदन जागा, जियो पिंड गृह स्थान तिसका तन जोबन तन माल जियो, सा सदा बल जाए नानक सर्व जिया प्रतपाल जियो। श्लोक, तदा उत्तरे हर हरे गुण गोविंद वखियान, नानक पगड़ी टेक एक परमेश्वर रखे निदान, शंत तो स्वामी प्रवरख को अंचलता के लाग जियो, बस साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो, एक ओढ़ कीजे जियो दीजे आस एक तरणी तरे, ता संगे हर नाम रंगे संसार सागर सब तरे, जन्म मरण विकार छूटे फिर ना लागे दाग जियो, बल जाए नानक पुरख पूर्ण फिर जाका सोहाग जियो। श्लोक, धर्म अर्थ हर काम ओक मुक्त पदार्थ नाथ, सगल मनोरथ पूरे नानक लिखिया माथ, शंत सगल इश मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय जियो, अंध भया वड पागी हो ग्रे प्रगटे प्रभ आए जियो, ग्रे लाल आए पूर्व कुमाए तागी उमा क्या गणा, बेंत पूर्ण सुख सहज दाता कमल रसना गुण पणा, आपे मिलाए गए कंठ।

वेद निर्मय ओंकार शब्द उदरे ओंकार गुरमुख तरे ओ नम अखर सुनो विचार ओ नम अखर निरपमसार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाओ सस्य सब जग सहज उपाय तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवे चुन ले मानक मोती समझे सूझे पड़ पड़ बूझे अंत निरंतर साचा गुरमुख देखे साच संभाले बिन साचे जग काचा तदे धर्म तरे तरमापुर गुणकारी मन धीरा तदे तूल पड़े मुख मस्तक कंचन पए मनूरा तन तरणी तर आप अजोनी तोल बोसज पूरा करते की मित करता जाने कहे जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिग खाया गुर रस गीत बादनी पावे सुनिए गहे गंभीर गवाया गुरस कहे अमृत लया मन तन सा सुखाया आपे गुरमुख आपे देवे आपे अमृत पी आया एक को एक कहे सब कोई होमे गर्भ वे आपे अंतर बार एक पछाणे क्यों कर मैल संजापे प्रभ नेड़े हर दूर ना जानो एक को सृत सबाई एक अंकार अवर नहीं दूजा नानक एक समाई इस करते को क्यों गए राखो अफरे तुल्यो ना जाई माया के देवाने प्राणी झूठ ठगौरी पाई लाभ लोभ मोहताज विगूते इवता फिर पछताई एक सरेवे ता गत मित पावे आमन जान रखाई एक अचार रंग एक रूप पौन पानी अग्नि असरूप एक को पावर पवे ते लोए एक को बूझे सूझे पद होए ज्ञान जान ले समसर रहे गुरमुख एक विरला को लहे जिसनु दे कृपा ते सुख पाए गुरु द्वारे आग सुनाए ऊर्म तूर्म ज्योत उजाला तीन पण में गुर गोपाला उगव्या असरूप दिखावे कर कृपा अपने कर आवे ऊन बरसे निजर तारा उत्तम तब सवारण हारा इस एक का जाने पेओ आपे करता आपे देओ उगवे सूर असर संघारे ऊंचो देख शब्द विचारे ऊपर आद अंत लोए आपे करे कथे सुने सोए ओ विधाता मन तन दे ओ विधाता मान मुख सोए प्रभ जग जीवन अवर न कोए नानक नाम रते पद होए अराजन राम रवे हितकार रण में लूजे मनुआ मार रात दिन अंत रहे रंगराता तीन पौन जो चारे जाता जिन जाता सो तिस ही जेहा आत निर्मायल शीश देहा रे सी राम हृदय एक पाए अंतर शब्द साच लिवलाए रोस न कीजे अमृत पीजे रहन नहीं संसारे राजे राय रंक नहीं रहना आए जाए जुग चारे रहन कहन ते रहे न कोई इस पे करो बेनंती एक शब्द राम नाम निरोधर गुरदेवे पत मती लाज मरंती मर गई भूगुट खोल चली साध दीवानी बाबरी सिरते संक टली प्रेम बुलाई रलीस्यों मन में शब्द आनंद लारती लाली पई गुरमुख पई निचिंद लहा नाम रतन जब सार लाभ लोभ बुरा अंकार लाड़ी चाड़ी लाए तबार मानमुख अंधा मुग्ध गुवार लाहे कारण आया जग होए मजूर गया ठगाए ठग लहा नाम पूंजी वे साहो नानक सची पात सच्चा पात साहो आए विगूता जग जम पंथ आई ना मेटन को समरथ आज सैल नीच कर होए आज देख निवे जिह दोए आज होए तामुक्त से आना भगत बिहुना जग बोराना सब में वरते एक को सोए जिसनु कृपा करे तिस प्रगट होए जुग जुग थाप सदा निर्वैर जन्म मरण नहीं तंदा तैर जो दिसे सो आपे आप उपाय आपे कड़ थाप आप अगोचर तंदे लोई जुग जुगत जग जीवन सोई कर आचार सच सुख होई ना विहुना मुक्त के होई।

मन जा गोटी सत संतोख संजमख नाल नानक गुरमुख नाम समाल कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता कमन सो अंतर बहार जुगता कमन सो आवे कमन सो जाए कमन सो तिरफुन रहा समाए घट घट गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बहार शब्द सो जुगता मन मुख बिन से आवे जाए नानक गुरमुख सा समाए क्यों कर बादा सरपन खद क्यों कर खोया क्यों कर लादा क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा क्यों तत् विचार ऐसो गुरु हमारा दुर्मत बादा सरपन खद मनमुख खोया गुरमुख लादा सतगुरु मिले अंधेरा जाए नानक हो में मेड़।

मित्र सब काज सवारिया, जे तू आवे चित तो प्रवान जन, जे तू आवे चित बहुता ते स्थान, जे तू आवे चित तो वड परवारिया, जे तू आवे चित तिन कुर उधारिया। श्लोक महला पंजवा। अंदरों अन्ना बारों अन्ना, कूड़ी कूड़ी गावे, देही तोवे चक्र बनाए, माया नू बहुतावे। अंदर मैल ना उतरे होमे, फिर आवे जावे, नींद व्यापिया काम संतापिया, मुखों हर हर कहावे। वैष्णो नाम करम हो जूता, तो कुट्टे क्या फल पावे। हंसा विच बैठा बागना बनाई, नित बैठा मछी नू तार लावे। जा हंस सभा विचार कर देखन, ता बग्गा नाल जोड़ कदे ना आवे। हंसा हीरा मोती चुगना, बग डड्डा फलन जावे। उडरिया विचारा बगला, मत होवे मंज लखावे।

मन तन हिरदे सिमरहर आड़ पैर गुणगाओ उपदेश सुनो तुम गुर सिखो सच्चा ए सुआओ जन पदार्थ सबर होए मन में लायो पाओ सूग सहज आनंद कणा प्रभ जपत्या दुख जाए नानक नाम जपत सुख उपजे।

लहने तरयो छत्र सिर असमान के आड़ा शिक्यो जोत सुमानी जोत मावे आप आपे से ती मिक्योन सिखा पुत्रा कोख कह सब उम्मत वेखो जिक्योन जा सु दोस्ता लहना टिक्योन फेर वसाया फेर आन सद गुर खाडूर जब तब संजम नाल तुद होर मुच गुरूर लब बना गए मानस जो पानी बूर वरय दर गए गुरु की कुदरती नूर जित सु हाथ न लभई तू ओ ठरूर नौ निध नाम निधान है तुद विच पर।

जब तब संजम गुरमुख भोगी रहाओ, बुद्ध विपूत चढ़ावो अपनी, सिंगी सुरत मिलाई, कर बैराग फिरो तन नगरी।

गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन पर जियो पिंड था दिया इसकी पाव भक्त नहीं साधी रहा पर तन पर तन पर ती निंदा पर अपवाद ना छूटे आवागमन होत है फुन फुन यो प्रसंग न टूटे जे कर कथा होत हर संतन एक निमखना की नो मैं फेरा लंपड़ चोर दूत मतवारे तीन संग सदा बसेरा काम क्रोध माया मद मस्तर ए संपे मोह माही दया धर्म अर गुर की सेवा ए सुपन तरनाही दीन दयाल के पाल दमोदर भगत बछल पैहारी कहत कबीर पीर जन रखो हर सेवा करो तुम्हारी जे सिम

गगन मझारंग बेदियले चक्कर पुहंगा पेटियले राय निसंगा चुकियले मोह मयास सदकीनो सूर गेरास जाब कुंभक परपुर लीना ते बाजे अनहद बीना भगते बाक शब्द सुनाया सुनते सुर मन बसाया कर करता उत सपारंग कहे कबीरा सारंग चंद सूरज दो ज्योत स्वरूप ज्योति अंतर ब्रह्म अनूप कर ज्ञानी ब्रह्म विचार।

राखी अले मन राम नामा बेदी अले जैसे कनक कला चित मांडी अले रघाओ आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुमार पुरंदरीए

ऐसो दान नित नित है कीजे, आत्म जो निर्मायल कीजे, आप बराबर कंचन दीजे, राम नाम सर तऊ न पूजे, मने न कीजे रोस, जमे न दीजे दोस, निर्मल निर्वाण पद कीन लीजे, जस रस राय नंद, राजा मेरा राम चंद, परम में नामा तत् रस अमृत पीजे, राम कली बाणी सर्वदास जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए।

का स्वामी तुम दुष्ट तारे हरण के नट मोहल्ला चौथा मेरे मान जप हर हर राम रंगे हर हर कृपा करी जगदीशर हर त्यायो।

हमरा को वड़ पा बगे तुमरी संगत हार को ना उधरयो प्रभु की ये पतत पवगे गुण गावत शीपा दुष्टारयो प्रवरा की पैज जानगे जो तुमरे गुण गावे स्वामी हम बाल बाल बाल तिनगे पावन पावन।

पुत्र सब किए, जे तूर परी जन पगे, तुमरे गुण प्रव कह न सके हम, तुम वड़ वड़ पुरख वडगे, जन नानक को दया प्रवतारो, हम सेवो तुम जन पगे। नट मोहल्ला चौथा। मेरे मन जप हर हर नाम मने, जगन्नाथ कृपा प्रतारी, मत गुरमत नाम बने रघाओ, हर जन हर जस हर हर गायो, उपदेश गुरु गुर सुने, केल भग पाप नाम हर काटे, जे खेत किसान लुने, तुमरी उपमा तुम ही प्रव जान हो, हम कह न सके हर गुने, जैसे तुम तैसे प्रव तुम ही गुण जानो प्रभ अपने, माया फास बंद बो बंदे, हर जप्यो खुल खुलने, ज्यो जल कुंचर तनुए बंदेओ, हर चेत्यो मोख मुखने, स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम को जो जुग जुग ने, तुमरी था पाई नहीं पावे, जन नानक के प्रवड ने। नट मोहल्ला चौथा। मेरे मन कल कीर्त हर प्रवणे, हर हर दयाल दया प्रतारी, लग सतगुर हर जपने रगाओ, हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी, सब त्यावे हर उड़ने, जिनको तुमरे वड कटाख है, ते गुरमुख हर सिमरने, ए प्रपंच किया प्रस्वामी, साब जग जीवन जुगने, जो सलल है सरल उठे बहुलहरी, मिल सलल है सलल समणे, जो प्रो किया सो तुम ही जान हो, हम न जानी घर गहने, हम बार्क कहो विपुस्त तारो, हम करे प्रभु सिमरणे, तुम जलनिध हर मान सरोवर,

मान सेव सफल हर काल ले गुर पग रे नरवाल सब दाल पंज दुख दाल हार हो नदर निहाल रखाओ हर का ग्रहो हर आप सवार्यो हर रंग रंग मैल बेअंत लाल लाल हर लाल अरे अपनी कृपा करी आप गृह आयो हम हर की गुर की है बसीठी हम हर देखे पई निहाल निहाल निहाल निहाल हर आप ते की खबर गुर पाई मन तन आन दो आनंद पये हर आप ते सुने मेरे लाल हर लाल जन नानक हर हर मिले पय गलतान हाल निहाल निहाल नट महला चौथा मन मेल संत संगत शुभवंती तुन अकथ कथा सुखवंती सब किरबिख पाप लखंती हार हो लिखत लखंती ही रखाओ हर कीरत काजुग विच उत्तम मत गुरमत कथा पजंती जिन जिन सुनी मनी है जिन जान ते जन के हों कुरबा अनंती हर अकथ कथा का जिन चाखे ते जन सा पूख लखंती नानक जान हर कथा सुन तृप्ते जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल तिस को हो बल बल बाल तो हर जन गए पल पाल हार हो मेल निहाल रखाओ हर का मार्ग गुर संत बतायो गुर चाल दिखाई हर चाल अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सिख हो ने कपट कमाओ हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे घर प्रपाए जिन्ना घर प्रव जान्यो मेरा नाल जन नानक कहो मत हर प्रव दीनी हर देख निकट हदूर।

रखाओ। आज्ञा मान जान सुख पाय, तुन सुन नाम तुहारो जियो। ईगा ऊहा हर तुम ही यो गुरते मंत्र दृढ़ियो। जब ते जान पाई ए बाता, ताब कुशल खेम सब तीयो। साध संग नानक परगासियो।

सदगुर ज्ञान मज्जन गए नीको, मिल कल मल पाप उतारे रघाओ। संगत का गुण बहुत अधकाई, परसुआ गण उधारे। परस न परस भय कुबजा कहो, लय बैकुंठ सुधारे।

सुनावे जो बोले सो ना बिचारे। सत संगत मिले ता दृढ़ता आवे हर राम नाम निस्तारे। जब लग जियो पिंड है साबत तब लग किशना संहारे। जब कर मंदर आग लगानी कर कूप कड़े पनगारे। सागत सिउ मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम बिसारे। सागत बचन विश्वा जो डसिए तज सागत पर परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूर्व जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद।

मटक मटक चल सखी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे गुरमुख सेवा मेरे प्रापाई मैं सदगुर अलख लखारे नारी पुरख पुरख सब नारी ताबे को पुरख मुरारे संत जिना की रेन मन पाई मेरे हर जन घर निस्तारे ग्राम ग्राम नगर सा फिरे प्रित अंतर घर जन पारे सरदा सरदा उपाय मिलाए मोको हर गुर गुर निस्तारे पावन सूत सब नी

साधु पुरख साध जन पाए, एक बिनो करो गुर प्यारे, राम नाम तन पूंजी देवो सब तृष्णा पूख निवारे। पते पतंग मृग प्रिंग कुंचर मीन, एक इंद्री पकर संघारे, पंच पूत सब लगे देही और सतगुर पाप निवारे। शास्त्र वेद सोध सोध देखे, मुन नारद बचन पुकारे, राम नाम पढ़ो गद पावो सत संगत गुर निहतारे। प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी, जिव सूरज कमल निहारे, मेर सुमेर मोर बो नाचे जब उनमें कान कन हारे। सागत को अमृत बो सिंचो सब डाल फूल विस्कारे, ज्यो ज्यो निवे सागत नर सेती छेड़ छेड़ कड्डे बिखकारे। संतन संत साध मिल रही है, गुण बोले परे पुकारे, संत संत मिले मन बिसे जो जल मिल कमल सवारे। लोभ लहर सब स्वान खलक है, हलके सबे बिगारे, मेरे ठाकुर कह दीवान खबर होई गुर ज्ञान खड़ग ले मारे। राख राख राख प्रा मेरे, मैं राखो कृपा तारे, नानक मैं तर अवर न काई, मैं सतगुर गुर निस्तारे। शक्का एक राख।

प्रहलाद जन हर नाग पकड़िया, हर रख लियु तराया, हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया। ओ जन्म मर निवार ठाकुर हर गुरमति प्रपाया, हर पतत पावन नाम स्वामी ओ भगत पंजन गाया। हर हार हर उतारे जन नानक नाम समाया, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रखाओ, वडभागी गुर दर्शन पाया, गुर मिले घर प्रवजाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिनी घर प्रापाया, तिन पूछो घर की बाता, पाए लगो निद करो जुदरिया, हर मिलो कर्म वेदाता, लिलाड़ लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी मन तन राता, हर प्र आए मिले सुख पाया, सब केलभ पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, तिनकी उत्तम बाता, तिनकी पंख पाये वडभागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा, सब सिद्ध साधक मुनजना, मन पावनी घर त्यायो, अपरम्परो पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो, रहाओ हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेत्यो हर रायो, हरियान मेल्यो सदगुरु, खिन बंध मुक्त करायो, प्रामस्त के तुर लिखया, गुरमती घर लिवलायो, पंच शब्द दर गए बाजया, हर मिलो मंगल गायो, पतत पावन नाम नर हर, मंद पागिया नहीं पायो, ते गर्भ जो नी गालिये, ज्यो डोन जरे गलायो, मत दे हर अगम ठाकुर, गुर चरण मन में लायो, हर राम नाम में रहो लागो, जन नानक नाम समायो, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा, मेरा मन राम नाम रस लागा, कमल प्रगास पया गुर पाया, हर जप्यो परम पो भागा रगाओ, पय पाए भगत लागो मेरा हीरा, मन सोयो गुरमत जागा, किल बिख खीन पय सांत आई, हर उतारियो वडभागा, मान मुख रंग कुसुम्भ है कछुआ, ज्यो कुसुम चार दिन चागा, खिन मैं बिनस जाए परताप, दंड तरमरा एका लागा, सत संगत प्रीत साध अत गूढ़ी, जो रंग मजीठ बो लागा, काया कापर चीर बो फारे, हर रंग न लहे सुपागा, हर चारो रंग मिले गुर शोभा, हर रंग चलू ले रंगा, जन नानक तिनके चरण पखारे, जो हर चरणी जन लागा, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा, मेरे मान भाज हर हर नाम गोपाला, मेरा मातन लीन पया राम नामे, मत गुरमत राम रसाला, रहाओ गुरमत नाम त्यागे हर हर, मन जपगे हर जपमाला, जिनके मस्तक लिखिया हर मिलिया।

रे मन टहल हर सुखसार, अवर टहलां झूठियां निर करे जम सिर मार। रखाओ जिन्ना मस्तक लिखिया ते मिले संगार, संसार पौ जल तारिया हर संत पुरख अपार। नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह बेकार, सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार। एक परम फूले सागता बिन गुर अंध अंधार, तुर हो ना सो होया को ना मेटन हार। अगम रूप गोविंद का अनक नाम अपार, तन तन ते जन नानका जिन हर नामा उरतार। माली गौड़ा महला पंजवा राम नाम को नमस्कार, जास जबत होवत उधार। रहाओ जाके सिमरन मिटे तंद, जाके सिमरन छूटे बंद, जाके सिमरन मूर्ख चतर, जाके सिमरन कुले उधर, जाके सिमरन पौ दुख हरे, जाके सिमरन अबदा टरे, जाके सिमरन मुजद पाप, जाके सिमरन नहीं संताप, जाके सिमरन हृदय विगास, जाके सिमरन कवला दास, जाके सिमरन निध निदान, जाके सिमरन तरे निदान। पतत पावन नाम हरी, ओड़ पगत उधार करी, हर दास दासा दीन शरण, नानक माथा संत चरण। माली गौड़ा मोहल्ला पंजवा ऐसो सहाई हर को नाम, साध संगत परिपूर्ण काम। रखाओ बूढ़ को जैसे बेड़ी मिलत, बूझत दीवक मिलत तिलत, जलत अग्नि मिलत।

कोय, पूरे या सगल मंडल एक स्वामी सोय, कर्ण हर जस नेत्र दर्शन रसन हर गुण गाओ, बलिहार जाए सदा नानक देव अपना नाओ, माली गौड़ा बाणी भगत नाम देव जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तन तन ओ राम बेन बाजे, मदर मदर तुन अनहत गाजे, रहाओ तन तन मेघा रोमावली, तन तन कृष्ण ओढ़े कामली।

सब नगरी में एको राजा सब पवित्र है थावा बाबा देव सा सच गावा जाते सहजे सहज समावा रहाओ बुरा पला किस आपस ते जाने ए सगल विकारा यो फरमाया खजम का हुआ वरत यो संसारा इंद्री तात सबल कहित है इंद्री किसते हुई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई गुर प्रसादी एक लेवलागी दुबदा तदे बेनासी दुत्स पाना सो सतकर मानिया काटी जमकी फासी पंत नानक लेखा मांगे कवना या चूके मन अवमाना तास तास धर्म राय जपत है

प्रसाद, हर हर भगत परे पंडारा, गुरमुख राम करे निस्तारा, जिसनु कृपा करे मेरा स्वामी, सो हर के गुण गावे जियो, हर हर कृपा करे बनवाली, हर हृदय सदा सदा सुमाली, हर हर नाम जपो मेरे जीवड़े, जप हर हर नाम छिड़ावे जियो रखाओ, सुख सागर अमृत हर नाओ, मंगत जन जाचे हर देव पसाओ, हर सत सत सदा हर सत, हर सत मेरे मन पावे जियो, नवे शिदर सर्वे अपवित्रा, बोल हर नाम पवित्र सब किता, जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी, हर सिमरत मल ले जावे जियो, माया मोह बिखम है पारी, क्यों तरगे दुत्तर संसारी, सतगुर बोध दे प्रसाद।

असाध रोग उपजो तन पीतर कर तन काहू टारियो प्रा बिसत महा दुख पायो यो नानक तत विचारियो मारू महला पंजवा चरण कम प्रव राखे चीत हर गुण गावे नीता नीत इस बिन दूजा अवर न को आद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रखाओ जाके वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार नानक गए हो साचा सोए सुख पाया फिर।

तिसै बूझ जिन तू किया प्रकरण कारण एक रखाओ चेत मन में तस्यानप जोड़ सगले भेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू महला पंजवा पत पावन नाम जाको अनाथ को है नाथ महापौजल माहे तुलहो जाको लिखे उमा।

माया कीमत जन्म सरायो, आराम भजन नहीं लागे ओ रहाओ। जम को डांड परे सिरी ऊपर, तब सोवत तय जागे हो, ता होत आपके पुछताए, झूठत नाहन पागेओ। ए चिंता उबजी घट मैं, जब गुर चरणन अनरागेओ। सोफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभु जस मैं पागेओ। मारू अष्टपदियां, महला पहला, कार पहला, एक ओंकार। सतगुर प्रसाद, वेद पुराण कथे सुने, हारे मुनि अनेका, अड़सठ तीर्थ बहु कणा, प्रम था के पेखा, साचो साहिब निर्मलो।

ना बिना को कछ नहीं, गुरपूरे पूरी मत कीन रहाओ। अवगुण सुबर गुण नहीं, बिन गुण क्यों कर जाओ। सहज सब सुख उपजे, बिन भागा तन नाहे। जिनके नाम ना मन बसे, से बादे दुख सहाहे। जिन्नी नाम सारिया, ते किताए संसार। आगे पासे सुख नहीं, गाडे लादे शार। विछड़िया मेला नहीं, तू कणु जमद्वार। अगे क्या जाना ना है, मैं भूले तू समझाए। भूले मार्ग जो दसे, तिसके लागो पाए। हुर बिन दाता को नहीं, कीमत कहण न जाए। साजन देखा ता गल मिला, साच पठायो लेख। मुख तिमाणे तन खड़ी, गुरमुख आखी देख। तुद पावे तू मन वसे, नदरी कर्म वसेख। भूख पिया सो जे पवे,

पूरे सावास है काटे मन पीरा लाला गोला तनी को क्या कहो बड़े आई है भाणे बक्से पूरा तनी सच कार कमाइए विछड़िया को मेल लय गुर को बल जाइए लाले गोले मत खरी गुर की मत निकी ताती सुरत सुहावनी मानमुख मत फीकी मन तन तेरा तू प्रभु सज तीरक तुरकी सचे बैसन उठना सच भोजन भाख्या चित सचे वितो सचा साचा रचाख्या साचे घर साचे रखे गुर बचन सुपाख्या मनमुख आलस घणो फाथे उजाड़ी पाथा चुगे न चोगड़ी लाग बंद विगाड़ी गुर प्रसादी मुक्त होए साचे नेताड़ी अनहत लाला विद्या प्रभगेत प्यारी।

युक्त सुजान स्वामी सदा राखण हार दुख दर्द कलेश बिन सह जिस बसे मन माहे मृत नरक स्थान बिखड़े बिखना पोहे ताहे रिद्ध सिद्ध नवनिध जा कहे अमृता प्रवाह आद अंते मद पूरन ऊच अगम अगाह सिद्ध साधक देव मुंजा वेद करे उचार तेमर स्वामी सुख सहज पुंच नहीं अंत पारा वार अनक प्राशित मिटे खिन मह हृदय जप भगवान पावना ते महापावन ओड़दान इसनान बर बुद्ध सुध प्राण सर्वस संतना की रास बिसर नाही निम्फ।

कुमार है गगन अंतर तख चढ़ाया सागत नार शब्द सुरत क्यों पाई है शब्द सुरत बिन आई है जाई है नानक गुरमुख मुक्त परायण हर पूरे भाग मिलाया निरपो सतगुर है रखवाला भगत प्राप्त गुर गोपाला तुन आनंद अनाहत वाज है गुर शब्द निरंजन पाया निरपो सो सिरना ही लेखा आप अलेख कुदरत है देखा आप अतीत अजोनी संपो नानक गुरमत सो पाया अंतर की गात सदगुर जाने सो निरपो गुर शब्द पछाने अंतर देख निरंतर बूझ अंतर मांडो लाया निरपो सो अब अंतर वसया तैरस नाम निरंजन रसया नानक हर जस संगत पाई है हर सहजे सहज मिलाया अंतर बाहर सो प्रव जाने रहे अलिप्त चलते कर आने ऊपर आद सर्व त्यो लोई सच नानक अमृत रस पाया मारू महला पहला कुदरत करने हार अपारा कीते का नाही क्यों चारा जी उपाय रिजक दे आपे छेर सिर हुकम चलाए रहे पर पूरे किस नेड़े किस आखां दूरे गोवत प्रगट हर कड़कड़ देखो वरते ताक सबाया जिसको मिले सुरत सुमाए गुरसबदी हर नाम ते आए आनंद रूप अनूप अगोचर गुर मिले परम जाया मन तन तंते नाम प्यारा अंत सखाई चलन वारा मोप सार नहीं संग बेली बिन हार गुर किन सुख पाया जिसको नदर करे गुर पूरा शब्द मिलाए गुरमत सूरा नानक गुर के चरण सरे भो जिन पूला मार्ग पाया संत जना हर तन जस प्यारा गुरमत पाया नाम तुम्हारा जाचक सेव करे दर हर कहे हर दर गे जस गाया सदगुर मिले तमेल बुलाए साची दर गे गत पद पाए सागत ठौर नहीं हर मंदर जन्म मरे दुख पाया सेवो सदगुर समुंद अथाह पावो नाम रतन तन लाह बिख्या मल जाए अमृत सर ना बहो गुर सर संतोख पाया सदगुर सेवो संकन कीजै आसा माए निराश रखीज संसा दुख बिना सुन सेवो फिर बौड़ रोग ना लाया साचे पावे तिस बड़ी आए कौन सो दूजा ते समझाए हर गुरु मूर्त एका वर्त है नानक हर गुर पाया वाचे पुस्तक वेद पुराना एक बै सुने सुनावे काना अगर कपट कहो क्यों खुले फिर सतगुर तत् न पाया करे विभूत लगावे पसमे अंतर क्रोध चिंडा सोहो में पाखंड कीने जोग न पाई है बिन सदगुर अलख न पाया तीर्थ वर्त नेम करे उदयाना जात सत संजम कथे गयाना आराम ना बेन क्यों सुख पाई है बिन सदगुर परम न जाया न्योली कर्म पुहंगम पाठी रेचक कुंभक पूरक मन घाठी पाखंड तरम प्रीत नहीं हरसो गुर शब्द महारस पाया कुदरत देख रहे मन मानिया गुर शब्दी सा ब्रह्म पछानिया नानक आत्म राम सबाया गुर सदगुर अलख लखाया मारू सोल गए महला तीजा एक ओंकार सदगुर प्रसाद हुक्मी सहजे सिर चुपाई कर कर वेखे अपनी वड्याई आपे करे कराए आपे हुक्मे रहा सुमाई हे माया मोह जगत गुबारा गुरमुख बूझे कौ विचारा आपे नदर करे सो पाए आपे मेल मिलाई हे आपे मेले दे वड्याई गुर प्रसादी कीमत पाई मानमुख बहुत फिरे बिल लांदी दूजे पाए खुवाई हे होमे माया विचे पाई मानमुख फूले पत गवाई गुरमुख होवे सो नाए राचे साचे रहा समाई हे गुर ते ज्ञान नाम रतन पाया
मनसा मार मनमाए सुमा।

आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है, सदगुर सेवे आप गवाए, मिल प्रीतम शब्द सुख पाए, अंतर प्यार भक्ति रता, सहज मते बने आई है, दुख निवारण गुर ते जाता, आ मिलिया जग जीवन दाता, जिसनु लाए सोई बूझे, भाओ परम शरीर हो जाई है, आपे गुरमुख आपे देव है, सच्चे शब्द सतगुर सेव है, जरा जम ते जोए न सके, सचे स्यो बने आई है, तृष्ण अग्नि जले संसारा, जल जल खपे बहुत बेकारा, मनमुख ठौर न पाए कबू, सतगुर बूझ बुझाई है, सतगुर सेव सेव भागी, सचे नाम सदा लिव लागी, अंतर नाम रव्या ने केवल, तृष्णा शब्द बुझाई है, सच्चा शब्द सती है बाणी, गुरमुख विरले किने पछाणी, सच्चे शब्द रते बैरागी, आमन जान रखाई है, शब्द बुझे सो मैल चुकाए, निर्मल नाम से मन आए, सतगुरु अपना सदगी सेव है, होमे विचों जाई है, गुर ते बुझे तां दर सूझे, नाम विखूना करकत लूझे, सतगुर सेव की वड्याई, तृष्णा भू गवाई है, आपे आ मिले तां बूझे, ज्ञान विखूना किछु ना सूझे, गुर की दात सदा मन अंतर, बाणी शब्द वजाई है, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, कोई ना मेटे तुर फुरमाया, सत्संगत मैं तिनही वासा, जिन को तुर लिख पाई है, अपनी नदर करे सो पाए, सच्चे सबताड़ी चित लाए, नानक दास कहे बेनंती, भीख्या नाम दर पाई है, मारू महला तीजा, एको एक वरते सब सोई,

आपे बख्श लए सुख पाए, पूरे शब्द मिलाई है। दुर्म झूठी बुरी बुरियार, औगुणियारी औगुणियार, कच्ची मत फीका मुख बोले, दुर्मत नाम न पाई है। औगुणियारी कंत न पावे, मन की झूठी झूठ कमावे, इरका साओ न जाने मूर्ख, बिन गुर बूझ न पाई है। दुर्मत खोटी खोट कमावे, सीगार करे फिर खसम न पावे, गुणवंती सदा पिर रावे, सदगुरु मेल मिलाई है। आप पे हुम करे सा विख है, एक ना बख्श लए तुर लिख है, अन दिन नाम रते सद पाया, आपे मेल मिलाई है। हौमे तात मोहरस लाई, गुरमुख लिव साची सहज सुमाई, आपे मिल है आपे कर विख है, बिन सदगुर बूझ न पाई है। एक शब्द विचार सदा जन जागे, एक माया मोहे सोए रहे अपागे, आपे करे कराए आपे, होर करना किशु न जाई है। काल मार गुर शब्द निवारे, हर का नाम रखे उरतारे, सदगुर सेवा ते सुख पाया, हर के नाम समाई है। दूजे पाए फिरे देवानी, माया मोहे दुख माए समानी, बहुते पेख करे नहीं पाए, बिन सदगुरु सुख ना पाई है।

आसे आनंद मंगल हर चलत तुम आसे गुण गावे अनखत तुन बाणी ते नानक दा चितारना आमन जाना सब चलत तुम्हारा कर कर देखे खेल अपारा आ उपाय उपामन हारा अपना की आ पालना सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी सदा सदा जाई बलिहारी दुए कर जोड़ सिमरो दिन राती मेरे स्वामी अगम अपारना तुद बिन दूजे के सालाही एको एक जपी मन माही हुक्म बूझन पए निहाला ए भगतां की कालना गुर उपदेश जप के मन साचा गुर उपदेश राम रंग राचा गुर उपदेश टुटे सा बंधन यो परम मोह पर जालना जय राखे सोई सुख थाना ते जे होए सोई पल माना बिन से बैर नाही को बैरी सब एको है पालना दर चूके बिन से अंधियारे बड़ पए प्रा पुरख निरारे आव छोड़ पए सरनाई जिसका साथ कालना ऐसा कोवड़ पागी आया आड़ पैर जिन खदम ते आया ते जन के संग तरे सब कोई तो परवार सुधारना ए बख्शीस खदम ते पावा आड़ पैर कर जोड़ ते आवा नाम जपी नाम सहज समावा नाम नानक मिले उचारना मारू महला पंजवा सूर देखना फूल गवारा मिसन मुहारा चूड पसारा जग में कोई रहन न पाए नेचर एक नारायणा गुरपुरे की पौसरनाई मोसूसा परम मटाई एको मंत्र दृढ़ाए औखद सच नाम रिद गायना जिस नामे को तरसे बो देवा सगल पत जा की कर दे सेवा अनाथा नाथ दीन दुख पंजन तो गुरपुरे ते पायना होर द्वारा कोई न सूझे तिर पवन तावे ता किसु न बूझे सतगुर सौ भंडार नाम जिस यो रतन तसे ते पायना जाकी तूर करे पुनीता तुर नर देव न पावे मीता सत पुरख सतगुर परमेसर जे भेड़त पार परायणा पार जाब लोड़े मन प्यारे काम तेन सोही दरबारे तृप्त संतोष सेवा गुर पूरे नाम कमाए रसायणा गुर कै शब्द मरे पंच धातु पय पार ब्रह्म होवे निर्मला तू पार जा फेटे गुरपूरा ता पारस प्रसिद खायना कई बैकुंठ नाही लवे लागे मुक्त बपड़ी पी गया नी त्यागे एकंकार स गुर ते पाई है हौ बल बल गुर दरसायणा गुर की सेव न जाने कोई गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई जिसनु लाए लए सो सेवक जिस बड़ पाग मथायणा गुर की महिमा वेद न जाने तुश मात तुन सुन वखाणे पार ब्रह्म अपरम पर सदगुर जिस सिमरत मन सीतलायणा जाकी सोए सुनी मन जीवे।

तर्हि केश गोवर्धनधारी मुरली मनोहर हार रंगा मुहुर माधव कृष्ण मोरारे जगदीश हर जीव असर संहारे जगजीवन अविनाशी ठाकुर कड़कड़वासी है संगा तरणी तर ईश नरसिंह नारायण।

चक्र पाण दर्श अनुपया सहस नेत्र मूर्त है सहसा एक दाता सब गये मंगा भगत वचल अनाथ है नाथे गोपी नाथ सगल गये साथे महादेव नरंजन दाते वर्ण साको गुण अंगा मुकंद मनोहर लक्ष्मी नारायण द्रौपदी लज्जा।

तिनकी तूड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरे नाही काहू बेरा, इनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार तजाए, ते जन को उपदेश निर्माल का, तुद बिन नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभु के पैरा, हों बलिहारी सदगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रा बिसरे नाही, आड़ पैर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राते, तू समरथ वडाल का, मारू महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, चरण कमल हिरदे नितारी, गुरपूरा खिन खिन नमस्कारी, तान मन अर्प तरी सब आगे, जग में नाम सुहावना, सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे सास वारे, सास ग्रास समाले, करता कीता अपना पावना, जाते बिरता को नाही, आड़ पैर हर रख मन माही, साध संग पच चुत स्वामी, दरगे सोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सह सुगुनौ निध, सर्व कल्याण जे मन में चाह है, मिल साधु स्वामी रावणा, सास्त सिमरत वेद बखाणी,

जो जपे सोई वड़ पागी बौड़ना जो नी पावना जिसनु बिसरे पुरख बेदाता जलता फिरे रहे निरताता अकिरत कणे कौ रखे ना कोई नरक कोर में पावना जियो प्राण तन तन जिन साजया माद गर्भ मह रख निवाजया तिस्यो प्रीत शाट अनराता काहू सरे ना लावना तार अनुग्रह स्वामी मेरे कड़कड़ वसे सबन कै नेरे हाथ हमारे कछु होए नाही जिस जनाए तिसे जनावना जाके मस्तक तुर लिख पाया तेसी पुरख न व्यापे माया नानक दास सदा सरणाई दूसर रवे ना लावना आग्या दूसू सब कीने अमृत नाम बिरले ही चीने ताकि कीमत कहण न जाई जड़कद ओई समावना तोई भगत सोई वड़दाता तोई पूर्ण पुरख बेधाता बाल सहाई सोई तेरा जो तेरे मन पावना मृत दुख सुख लिख पाए तिल नी बदे कटे ना कटाए सोई हुए जे करते पावे कह के आव न्यामना अंधकूबते से ही काढ़े जन्म जन्म के टूटे गंडे कृपा तारखे करे अपने मेरे साधु गोविंद त्यामना तेरी कीमत कहण न जाई अचरत रूप वड्डी वड्याई भगत दान मंगे जन तेरा नानक बल बल जामना मारू वार महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला पहला वेण गाहक गुण वेतिए तौ गुण सहगो जाए गुण का गाहक जे मिले तौ गुण लाख विकाए गुण ते गुण मिल पाईए जे सतगुर माए सुमाए मोल अमोल ना पाईए वणजना लीजे हाट नानक पूरा तोल है कहो ना होवे काट महला चौथा ना विहूने परम से आवे जावे नीत एक बंद एक टीलिया एक सुगी हर प्रीत नानक सच्चा मन लय सच करनी सच रीत पौड़ी गुरते ज्ञान पाया अद खड़ग करारा दूजा प्रमगढ़ कटिया मोलोभ अहंकारा हर का नाम मन वसया गुर शब्द विचारा सच संजम मत कूतमा हर लगा प्यारा सब सचो सच वर्तदा सच सृजनहारा सलोक महला तीजा केदारा रागा विच जानिए पाई सबदे करे प्यार सत्संग सो मिलदो रहे सच्चे तरे प्यार विचो मल कटे अपनी कुलां का करे उधार गुणा की रास संग्रह अवगुण कढे विडार नानक मिलिया सो जानिए गुरु ना छोड़े अपना दूजे ना तरे प्यार महला चौथा सागर देखो डर मरो पै तेरे डर नाहे गुर के सब संतोखिया नानक बिगस्ता नाए महला चौथा चाड़ भोए थे चाल सो सागर लहरी दे ठाक ना सच्चे भोए थे जे गुर तीरक दे ते दर जाए उतारिया गुर दिसे सावधान नानक नदरी पाईए दरगे चले मान पौड़ी ने कंटक राज पुंच तू गुरमुख सच कमाई सच्चे तख्त बैठा न्याओ कर सतसंगत मेल मिलाई सच्चा उपदेश हर जापना हर स्यों बने आई।

पादर कहे न कोए, पूछो जाए सियाणिया दुख काटे मेरा कोए। सतगुर साचा मन वसे साजन उतही ठाए, नानक मन त्रिवता सीए सिवती साचे नाए। महला तीजा आपे करनी कार आप, आपे करे रजाए आपे किस ही बख्श ले आपे कार कमाए। नानक चानन गुर मिले दुख बिख जा लीनाए पौड़ी, माया वेख ना।

मरे दुख पावे, अंधे आपना पछाणनी, दूजे पज जावे, आत क्रोध सों लूज दे, अगे पिछे दुख पावे, हर जीव अहंकार।

पेशतवंत जति सती प्रव निर्मला मेरे हर भगवंत सब ब्रह्म प्रसार पसारे हो आपे खेलंत एहो आवा गमन रचायो कर चोज देखंत इस भौड़ गर्भ ना पावगी जे देवे गुरमंत जो आप चलावे त्यों चल दे केश वस ना जनता।

दो पौड़ी नेचल एक नारायणो और अगम अगाधा नेचल नाम निधान है जिस सिमरत हर लादा नेचल कीर्तन गुण गोविंद गुरमुख गा वादा सच धर्म तप नेचलो दिन रहन आराध दया धर्म तप नेचलो जिस कर्म लिखाद नेचल मस्तक लेख लिखया सो टले ना टलाद नेचल संगत साध जान बजन नेचल गुरसाद जिनको पूर्व लिखया

सुखदायक ज्ञान रास नाम तन सौंपियोन इस सौदे लायक संजी गुर नाल बहालिया सर्व सुख पायक मैं नाल हूं कदे ना विछड़े हर पिता सबना गल्ला लायक श्लोक दखणे महला पंजवां नानक कचड़िया से तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्या ओए जीवन दे विछड़े ओए मोया ना जागी छोड़ महला पंजवां नानक बिजलियां चमकन कुरन घटा अदकालियां बरसन मेघ अपार नानक संगम प्री सुहंदियां महला पंजवां जल थल नीर भरे शीतल पवन चुहार दे सेजड़ियां सोएन हीरे लाल

ब्यास कहत गए सुख को पूछो जाई, कहे कबीर आरामे राम छूटो नाए त बूढ़े पाई। बने बसे क्यों पाई है जौला मनो ना तरे विकार, जे घर बन संसर किया ते पूरे संसार, सार सु पाई गे रामा रंग रवो आत्मे राम।

प्यास गुर प्रसाद जे बूझया आसा ते पया निरास सब सच नदरी आया जो आत्म पया उदास आराम नाम रस चाख्या हर नम्मा हर तार कौ कबीर कंचन पया प्रम गया समुन्द्र पार उदक समुंद सलल की साखया नदी तरंग समाह में गे सुनने सुन मिलया समुन्द्र सी पवन रूप होए जामेंगे बहुर हम काहे आमेंगे आमन जाना हुकुम तसे का हुक्मे बुझ सुमावेंगे रघाओ जब चूके पंच तात की रजना ऐसे परम चुकावेंगे दर्शन छोड़ पय समुन्द्र सी एको नाम ते आमेंगे।

सिरानो कहू ना सिमरो राम, कहे कबीर चेते नहीं मूर्ख मुग्ध गवार। राम नाम जान्यो नहीं कैसे उतरस पार, अराग मारू बाणी जय देव जियो की एक ओंकार। सतगुर प्रसाद चंद सत पेदया नाल सत पूरिया, सूर सत खोड़सा दत किया, आ बल बल तोड़िया, आ चल चल थपया, आ कड़ कड़िया तय अप्यो पिया। मन आद गुण आद वखाणिया, तेरी दुबदा दृष्ट सम्मानिया। अरहाओ अर्ध को अर्धया, सर्द को सर्दया, सलल को सलल सम्मान आया। बद जय देव जय देव को रम्या, ब्रह्म निर्वाण लिव लीन पाया। कबीर मारू राम सिमर पछताएगा मन, पापी जीरा लोभ करत है आज काल उठ जाएगा। अरहाओ लालच लागे जन्म गवाया, माया परम भुलाहेगा। धान जोबन का गर्भ न कीजै, कद ज्यों गल जाएगा। जौ जम आए केस गए पट गए के।

कहे तो कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा, अराग मारू बाणी रविदास जी ओ की, एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छदर तरे रखाओ, जाकी शोत जगत को लागे, ता पर तुही ठरे, नीचे ऊच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे, नाम देव कबीर तलोचन, सदना सैन तरे, तै रविदास सुनो रे संतो, हर जीव ते सवे सरे, मारू सुख सागर सुर तर चिंता।

बारह माह एक ओंकार सदगुर प्रसाद तू सुन किरत करम्मा पुरब कुमाया सिर सिर सुख सहम्मा देसो तू पल हर जना तेरी कागत मेरी हर बिन कड़ी ना जीवा प्रेबाज दुहेली गोए ना बेली गुरमुख अमृत पीवा रचना राज रहे निरंकारी ब्राह्मण कर्म सुकर्मा नानक पंथ निघाले सा तन तू सुन आत्म रामा बाबी गा प्रे बोले कोकल बाणिया सा तन सबरस चोले अंक सुवाणिया हर अंक सुमाणी जा प्रा पाणी

सुर नर शब्द मिलाए तिन प्रव कारण किया तुखारी मुहला पहला तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर निहा लिया राम सेव कसूर करम्मा सदगुर शब्द दिखा लिया राम गुर शब्द दिखा लिया सच समा लिया अहे निस देख बिचारिया धावत पंच रहे कर जानिया काम क्रोध बिख मारिया अंतर जोत पई गुरसाखी तीने राम करम्मा नानक कहो मेमार बतीने तारा चढ़िया लम्मा।

मिल साध संगत करे रलियां, फिर ना पछुतावे कर दया दान दयाल साचा, हर नाम संगत पावो नानक पयम पै सुनो प्रीतम, गुर शब्द मन समझावो तुखारी शांत महला चौथा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर सबदी हौ सतगुर कै बलिहारिये सतगुर आगे सीस पेट देओ जे सतगुर साचे पावे आपे दया करो प्रदाते नानक अंक समावे तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाध अपरम

सगुरु पिछे जिन हर घर नाम ते आया। गुरबचन मार्ग जो पंथ चाले तिन जम जागाती नेड़ न आया। सब गुरु गुरु जगत बोले गुर के नाए लये सब छुटक गया। दुतिया जमन गए गोर हर घर जपन किया। तृतीया आए सुर

पुन होवे। गुर बचन नानक हर भगत लही, मिल आए नगर महाजना, गुर सदगुर ओट गही। तुखारी शांत महला पंजवा, एक ओंकार

सगल संपत काल सिर पर जान, मिथन मोह दुरंत आसा झूठ सर परमान, सत पुरख अकाल मूर्त हृदय तारो ध्यान, नाम निधान।

रूप रंग रेस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालो, प्राणी हर जप जन्म गयो, साच शब्द बेन कहो ना छूड़स, बिरता जन्म पयो रखाओ, तन में काम क्रोध को ममता, कठिन पीर अद फारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, एन बेद तार तू तारी, बहरे करण अकल पई होची, साबद सहज नहीं बूझया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध न सूझया, रहे उदास आस निरासा, सहज ध्यान बैरागी, परमत नानक गुरमुख छूड़स, राम नाम लेव लागी, भैरो महला पहला, ढूंढी चाल चरण कर खिसरे, तुचा दे कुमलानी, नेत्री तुंद करण पै बैरे, मनमुख नाम न जानी।

का आकारा काट वध को करे बिचारा कहत नानक इहो जियो कर्म बंद होई बिन सतगुर पेटे मुक्त न होई। भैरो मोहल्ला तीजा जोगी गरीब पंडित पेख तारी ए सूते अपने अहंकारी माया मदमाता रहे आसोए जागत रहे ना मूसे कोए रहाओ तो जागे जिस सतगुर मिले पंच दूत ओ वसगत करे सो जागे जो तत विचारे आप मरे अवरा नहीं मारे सो जागे जो एको जाने प्रकृत छोड़े तत पछाणे चौ वरना विच जागे कोए जमे काले ते छूटे सोए।

होए, निकर वस्ते सहज सुभाए, गुरमुख नाम से मने आए, आपे विखे विखणहार, नानक नाम रखो उरतार, भैरो महला तीजा, कल युग में राम नाम उरतार, बिन नावे माते पावे शार, राम नाम दुलभ है पाई, गुर प्रसाद वस्ते

मुन केते बिन शब्दे सुरत न पाई, त्रै गुण सबे रोग वे आपे ममता सुरत गवाई। एक आपे काड लए प्रभ आपे गुरसेवा प्रभ लाए, हर का नाम निधानु पाया सुख वसिया मन आए। चौथी पदवी गुरमुख वर्त है तेन निकर वासा पाया, पूरे सदगुर कृपा कीनी विचों आप गवाया। एक सकी सिरकार एक जिन ब्रह्मा बिशन रुद्र उपाया, नानक नेचल साचा एकु ना ओ मरे ना जाया। पैरो मोहल्ला तीजा मानमुख दुबदा सदा है रोगी, रोगी सगल संसारा गुरमुख बूझे रोग गवावे। गुर शब्दी विचारा हर जियो ससंगत मेलाए, नांग किसनों दे वडियाई।

जम काल सदा है सिरे ऊपर, दूजे पाए पद खोई, बैले पेख पवे दिन राती, होमे रोग न जाई, पड़ पड़ लूजे बाद वखाने, मिल माया सुरत गवाई, सतगुर सेवे परम गद पावे, नाम मिले वडियाई, नानक नाम जिन्हा मन वसिया, दर साचे पद पाई, भैरों महला तीजा, मानव आसा नहीं उतरे, दूजे पाए खुआए।

मर मर जम्मे सदा दुख पाए, दर की खबर न पाई। मेरे मन सदा रहो सदगुर की सरना, हिरदे हर नाम मीठा सद लागा, गुर सबदे पवजल तरना रहाओ। देख करे बहुत चित डोले, अंतर काम क्रोध अहंकार, अंतर तिसा पूख आत बहुती, पौकत फिरे दरबार। गुर कै शब्द मरे फिर जीवे, तिनको मुक्त द्वार, अंतर शांत सदा सुख होवे, हर आख्या उरतार। ज्यों तिस पावे तिवे चलावे, करना किशु न जाई, नानक गुरमुख शब्द संभाले, आराम नाम वडियाई। भैरों महला तीजा, होमे माया मोहे खुआया, दुख खटे दुख खाए, अंतर लोभ हलक दुख पारी, बिन विवेक परमाए। मनमुख त्रिग जीवन सहसा।

उबार खिन में भयान रूप निकसा थम उपाड़ अरणागस नहीं बिदारिया प्रहलाद लिया उबार संत जना के हर जियो कार्ज सवारे प्रहलाद जन के एक ही कुल उधारे गुर के शब्द होमे बिखमारे नानक राम नाम संत निस्तारे।

इनका दर्श देख मन बिकसे खेन खेन तिस को होम बलिहारी हार हृदय जापो नाम मुरारी कृपा कृपा कर जगत पे स्वामी हम दासन दास कीजे पनिहारी रहाओ। तेन मत उत्तम तेन पद उत्तम जिन हृदय वसिया बनवारी तिन की सेवा लाए हर स्वामी तेन सिमरत गत होए हमारी जिन ऐसा सतगुर साधना पाया ते हर दरगे काटे मारी ते नर निंदक सोभ ना पावे तेन नग काटे सिरजनहारी और आप बुलावे आपे बोले और आप निरंजन निरंकार निराहारी और जिस तू मिले सो तू मिलसी जन नानक क्या ए जंत विचारी। भैरों महला चौथा सत्संगत साई हर तेरी जे तर कीर्त हर सुनने जिन हर नाम सुनिया मन पीना तिन हम सरेवे निरचरणे जग जीवन हर ध्याए तरने।

हलत पलत जाकी स श्याम रहाओ, प्रभ आराधन निर्मल रीत, साध संग बिनसी विपरीत, मीत हीत तन ने पारणा, तन तन मेरे नारायणा, नानक बोले अमृत बाणी, एक बिना दूजा नहीं जानी, भैरों महला पंजवा, आगे दियो पाछे नारायण, मद पाघर प्रेम रसायण, प्रभु हमारे शास्त्र सौन, सुख सहज आनंद गृह पौन रखाओ, रसना नाम करन सुन जीवे, प्रभ सिमर सिमर।

अरहो अराम रसायन नित उड पीवो हार हार हार हार सुना कहो अरहाओ कल युग में एक नाम उधार नानक बोले ब्रह्म विचार भैरो महला पंजवा सतगुर सेव सर्व फल पाए जन्म जन्म की मैल मिटाए।

बिन श्रवणा कहां को सुनता, बिन नेत्रा कहां को पेख, ना बिना नर कही ना लेख, बिन विद्या कहां कोई पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित, बिन बूझे कहां मन ठहराना, ना बिना सब जग बौराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, ना बिना साध सड़गी चूरे।

मिटाया। भैरो महला पंजवा, कीत आवे ता महा आनंद, कीत आवे ता सब दुख पंज, कीत आवे ता सरदा पूरी, कीत आवे ता कभे न चूरी, अंतर राम राय।

रहाओ, जाकी दृष्ट दुख डेरा टहे, अमृत नाम शीतल मन गहे, अंग भगत जाके चरण पुजारी, सगल मनोरथ पूर्ण गारी, खिन में ऊने सुबर भरिया, खिन में सूके कीने हरिया, खिन में निथावे को दीनो थान, खिन में निमाने को दीनो मान, सब में एक रहा पर पूरा, सो जापे जिस सतगुर पूरा।

ऐसो त्यागी विरला कोए, हर हर नाम जपे जन सोए रहाओ, अंग बुद्ध का छोड़या संग, काम क्रोध का उतरिया रंग, नाम त्याए हर हर हरे, साजना के संग निस्तरे, बैरी मीत होए सम्मान, सर्वमय पूर्ण भगवान, प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, कर कृपा जिस राखे आप, तोई भगत जपे नाम जाप, मन प्रगास गुर ते मत लई, कहो नानकता की पूरी पई, भैरो महला पनवा, सुख नाही बहुते तन खाटे, सुख नाही पेखे नृत नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए, सुख सहज आनंद लहो, सास पागे वड़पागी, गुरमुख हर हर नाम कहो रहाओ। बंधन माल पिता सुध बनता, बंधन कर्म तर्म हो करता, बंधन काटनहार मन वस, तौ सुख पावे निज कर बस, सब जाजक प्रादे मनगार, गुण निदान बेंत अपार, जिसनु कर्म करे प्रव्यापना, हर हर नाम तिने जन जपना, गुर अपने आगे अरदास, कर कृपा पुरख गुणतास, कहो नानक तुमरी शरणाई, ज्यों पावे त्यों रखो गुसाई, भैरो महला पंजवां, गुरमुख त्यागो दूजा पाओ, गुरमुख जप्यो हर का नाओ, बिसरी चिंत नाम रंग लागा, जन्म जन्म का सोया जागा, कार कृपा अपनी सेवा लाए, साधु संग सर्व सुख पाए, हरहाओ रोग दोख गुर शब्द निवारे, नाम औखद मन पीतर सारे, गुर पेड़त मन पया आनंद, सर्वन दान नाम भगवंत, जन मरण की मिटी जमत्रास, साध संगत हूंद कवन विगास, गुण गावत निचल विश्राम, पूर्ण होए सगले काम, दुलभ दे आई परवान, सफल होई जप हर हर नाम, कहो नानक प्रभु कृपा करी, सास ग्रास जपो हर हरी, भैरो महला पनवा, तब ते ऊंचा जा का नाओ, सदा सदा ताके गुण गाओ, जे सिमरत सगला दुख जाए, सर्व सुख बसे मन आए, सिमर मना तू साचा सोए, हलत पलत तुमरी गत होए, रहाओ पुरख निरंजन सिरजनहार, जी जंत देवे आहार, कोट खते खिन बख्शनहार, भगत पाए सदा निस्तार, साचा तन साची वड्याई।

राम नाम रिद्ध दियो निवास, सदा आनंद नाही किज सोग, दुख दर्द न व्यापे रोग, तब के तेरा तू करने हार, पार ब्रह्म अगुण अपार, निर्मल शोभा अचरज बाणी, पार ब्रह्म पूर्ण मन पानी, जल थल महिल रविया सोए, नानक सब जि प्रवते होए, भैरो महला पंजवा, मन तारा ता राम रंग चरणे, सर्व मनोरथ पूर्ण करने, आठ पैर गावत भगवंत, सगुर दीनो पूरा मंत, सोवड़ भागी जिस नाम प्यार, तिसके संग तरे संसार, रहाओ सोई ज्ञानी जे सिमरे एक, तो तनवंता जिस बुद्ध विवेक, तो कुलवंता जे सिमरे स्वामी, सो पतवंता जे आप शानी, गुर प्रसाद परम पद पाया, गुण गोपाल निरहिण ते आया, टूटे बंधन पूर्ण आसा, हर के चरण हृदमाय निवासा, कहो नांग जाके पूर्ण कर्मा, सो जन आया प्रभु की सरना, आप वित पाम सब कीने, राम रसायन रसना।

निमखना छोड़े सदगी साथ हर सा प्रीतम अवर ना कोय सार संभाले साचा सोए माल पिता सुत बंद नारायण आद जुगाद भगत गुण गायन इसकी धार प्रभु का मन जोर एक बिना

पार ब्रह्म का निवास, तिद गुर कौ सत करी नमस्कार, तिद गुर कौ सत जाओ बलिहार, सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुर नानक जप जप स जीवा।

करना जाई। जगत उपाय तो तंदे लाया ढूंढी कार कमाई। जन्म पदार्थ जुए हारिया सब दे सुरत न पाई। मानमुख मरे तिन किशु न सूझे दुरमत अज्ञान अंधारा। भवजल पार ना पावे कभी डूब मोए

ही भगत करो जन शरण तुम्हारी। नाओ वीर माया नाओ मेरे पूंजी, तुम्हें छोड़ जानो नहीं दूजी। नाओ मेरे बंत पनाओ मेरे पाई, नाओ मेरे संग अंत होए सगाई।

आए ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमरो दुख पंजना अहाओ जब लग सिंह रहे बन माहे तब लग बन फूले ही नाहे जब ही स्या

जन कबीर को जोर ना पहुँचे, कहाँ करो रग राया, काम किवारी दो सुख दरवानी, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महा।

अर्ध उर्ध मुगला गोकास तुंड मंडल में कर परगास ऊगा सूरज नाही चंद आद निरंजन करे आनंद सो ब्रह्मंड पिंड सुजान मान सरोवर कर स्नान सो हं

कोड चंद्र में करे चराक तुरते तीस उजेवे पाक नागरे कूड ठाडे दरबार धर्म कूड जाके प्रतहार पवन कूड चौबारे सिर है बाजग कोट सेज बिस्तर समुद कूड जाके पानी हार रो मावल कूड अठारह पार

विद्या कोट सबे गुण कहे, तऊ पार ब्रह्म का अंत न लह, बावन कोट जाके रुमावली, रामन सयना जयते शली, सहस कोट भो करत पुराण, दुर्योधन का मथिया मान, कंदर्व कोट जाके लवे न तरह, अंतर अंतर मनसा हरे, कहे कबीर सुन सार्ग पान, दे अपय पद मांगो दान, भैरो बाणी नाम दियो जियो की, कार पहला एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, रे जेबा करू सदखंड, जामन उचरस

असंख कोट अन पूजा करी एक न पूस नामे हरी परमे नाम दियो इहो करना अंत रूप तेरे नारायण पर तान पर दारा पर हरी ताके निट बसे नर हरी।

परमत नाम दियो नाटे बिना ना सोहे बत्तीस लखना दूध कटोरे गडवे पानी कपल गाय नामे दुई आनी दूध पियो गोविंद राए दूध पियो मेरो मन पति आए नहीं ता कर को बाप रसाए हरहाओ सोयन कटोरी अमृत भरी लै नामे घर आगे तरी एक भगत मेरे हिरदे बसै नामे देख नारायण हस्ते।

भगत जिना को देवरा फिरे, भैरों नाम देव जियो कर दूजा एक ओंकार, सदगुर प्रसाद जैसी भूखे प्रीत अनाज, त्रिखा बंद जल सेती काज, जैसी

गोपाल गंग जमन जो उल्टी बह तो नामा घर करता रहे साल कड़ी जा बीती सुनी अजो न आयो तिर पवन तनी पाखंतन बाज बजायला गरड़ चढ़े गोविंद आयला अपने

राज गुरमत उत्तम संग साथ हर नाम रसायन सहज आथ मत बिसरस रे मन राम बोल अपरंपर अगम अगोचर गुरमुख हर आप तुलाए अतुल तोल रखाओ गुर चरण सरे वे गुर सिख तोर गुर सेव तय तज मेर तोर नर निंदक लोभी मन कठोर गुर सेव न पाई

गुर सब्दी हर चेत सुपाए, राम नाम रस रहे अघाए, कोड कुटंत्र के पाप जल जाहे, जीव तुमरे हर नाम समाहे, हर की दात हर जीव जाने, गुर के शब्द एहो मन मोलिया, हर गुण दाता नाम खाने रहाओ, भगवे वेश प्रा मुक्त न होए, बहु संजम संत न पावे कोए, गुरमत नाम प्राप्त होए, वडभागी हर पावे सोए, काल में राम नाम वडियाई, गुर पूरे ते पाया जाई, नाम रते सदा सुख पाई, बिन नामे होमे जल जाई, वडभागी

अरहाओ गुर प्रसाद लागे नाम स्वाद, काहे जन्म गवाब हो वैरवाद, गुर कृपा कीनी चूका अवमान। सहज पाए पाया हर नाम, उत्तम ऊंचा शब्द काम, नानक वखाणे साच नाम, बसंत महला तीजा। बनसत मौली चढ़िया बसंत, यो मन मोल्या सतगुरु संग, तुम साच त्यावो मुद मना, ता सुख पावो मेरे मना। अरहाओ एत मन मौल्य पया आनंद, अमृत फल पाया नाम गोविंद, एको एक तब आख बखाणे, हुक्मे बूझे ता एक।

काढ़ काट काढ़ काट रया समाय जाके भगत आनंदमय जाके भगत को नाही खै जाके भगत को नाही पै जाके भगत को सदा जय कौन उपमा तेरी कही जाए सुखदाता प्रवरयो समाय नानक जाचे एक दान कर कृपा मुझे देहो नाम बसंत मोहल्ला पंजवा मिल पानी ज्यो हरे बूट साध संगत त्यों होमे छूट जैसी दासे तीर मीर तैसे उदाहरण गुरे पीर तुम दाते प्रव देनहार नेमख नेमख इस नमस्कार अरहाओ जिसे प्राप्त साध संग हे जन लागा पार ब्रह्म रंग ते बंधन ते पय मुक्त भगत आराधे जोग जुगत नेत्र संतोखे दर्श पेख रसना गाए गुण अनेक तिसना बूझी।

तेरा दिया सब जंत खाहे अंतरजामी प्रभ दयाल अपने दास को नदर निहाल कर कृपा मुझ देहो दान जब जीवे नानक तेरो नाम बसंत मगल्ला पंजवा आराम रंग सब गए पाप राम जबत कछ नहीं संताप गोविंद जबत सब मिटे अंधेर हार सिमरत कछ नाहे फेर बसंत हमारे राम रंग संत जना सो सदा संग रहाओ संत जने किया उपदेश जय गोविंद भगत सो तन देश हर भगत हीन उद्यान थान गुर प्रसाद खड़ खड़ पछान हर कीर्तन रस पूग रंग मन पाप करत तू सदा संग।

जन को पहुंच ना सकस कोए प्रवदास रखे कर जतन आप अखंड पूर्ण या को प्रताप गुण गोविंद ने दर्शन गाए नारक जीवे हर चरण ते आए बसंत मोहल्ला पंजवा गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभु करी माया सर्व मनोरथ पूर्ण काम जब जीवे नानक राम नाम तारुत सुहावी जित हर चित आवे बिन सतगुर दिसे बिन लांती सागत फिर आवे जावे रगाओ से तनवंत जिन हर प्रवरास काम क्रोध गुर शब्द नास पै बिन से निरपय पद पाया गुर मिल नानक खसम ते आया साध संगत प्रभु कियो लिवास हर जप जप होई पूर्ण आस जल थल महियल रव रया गुर मिल नानक हर हर कहया अष्ट सिद्ध

ना पण सज दोत सवार प्रयो सेवो प्रप्रेम आधार गुर शब्दी बिगत्यास निवार मोहन मोहे लिया मन मोहे गुर के शब्द पछाना तोहे नानक ठाडे चाह है प्रभु द्वार तेरे नाम संतोखे कृपा तार बसंत महला।

मन पूलो समझस साच नाए, गुरु शब्द विचारे सहज पाए रहाओ। मन पूलो परमस पावरतार, बिल बिरथे चाहे बहु विकार, मैग जो फासस कामहार, कड़बंधन बाध्यो शीस मार, मन मुग्धो दादर भगतहीन, दर पलट सरापी नाम बीन, ताके जात न पाती नाम लीन, सब दुख सुखाई गुणे बीन, मन चले न जाई ठाक राख, बिन हरस राखे पत न साख, तू आपे सुरता आप राख, हर तारण देखे जाने आप, आप पुराए किस कहो जाए, गुर मिले बिरथा कहो माए, अब गुण छोड़ो गुण कमाए, गुर शब्दी राता सच समाए, सदगुर मिले मत उत्तम होए, मन निर्मल हो में कड्डे तोए, सदा मुक्त बंधना सके कोए, सदा नाम खाने और न कोए, मन हर के पाने आवे जाए, सब में एको केश पहन न जाए, सबको वर्त हुक्म सुमाए, दूसु सब तिसर जाए, तू अपुल ना पुलो कदे नाहे, गुर शब्द सुनाए मत अगाहे, तू मोटो ठाकुर शब्द माहे, मन नानक मानिया सच सलाहे, बसंत महला पहला दर्शन की प्यास जिस न रहोए, एक तराचे पर घर दोए, दूर दर्द मत अमृत खाए, गुरमुख बूझे एक समाए।